ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 6 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और सेकेंड लेडी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटी डी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा

0: की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है स्त्रियों की सबलता पर गांधी के विचार। वाचक स्वर है श्रीमती बरखा थानवी व्यास का।
2: आज का विषय है स्त्रियों की सबलता पर गांधी जी के विचार। मेरा आदर्श ये है कि पुरुष पुरुष रहते हुए स्त्री बने तथा स्त्री स्त्री रहते हुए पुरुष बने। पुरुष को स्त्री बनना चाहिए, अर्थात उसमें स्त्रियों की नम्रता और विवेक होना चाहिए, और स्त्रियों को पुरुष बनना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उसे भीरुता को छोड़ हिम्मत वाली और बहादुर बनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों में ईर्ष्या भाव बहुत होता है, लेकिन पुरुषों में ईर्ष्या होती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। उसी तरह सभी स्त्रियां भी ईर्ष्यालु नहीं होती। बात सिर्फ इतनी है कि चूंकि स्त्रियों को 24 घंटे घर में रहना पड़ता है, इसलिए उनकी ईर्ष्या अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुरुष और स्त्री दोनों निर्भय बन सकते हैं। पुरुष प्राय ऐसा मानता है कि वह निर्भय रह सकता है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। और इसी तरह स्त्रियां भी अपने को निर्बल मानकर अपने लिए अबला नाम चलने देती हैं। ये बात भी ठीक नहीं है। स्त्रियों को भयभीत रहने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। स्त्री और पुरुष दोनों जब तक विकार के वशीभूत हैं, तब तक दोनों का भय है। आत्मा का उद्धार आत्मा ही कर सकती है। आत्मा का बंधु आत्मा ही है। स्त्रियों का उद्धार स्त्रियां ही कर सकती है। इसके लिए तपश्चर्या की जरूरत है। यह बात सच है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा तपश्चर्या शक्ति अधिक होती है, लेकिन ये तपश्चर्या विवेकपूर्वक की जानी चाहिए। कोई भी दूसरा व्यक्ति स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा कह सकते हैं कि वे अपनी रक्षा आप ही कर सकती हैं। वे स्वावलंबी बन सकती हैं अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में मेरे अंतर से ये ध्वनि निकलती है कि हाँ, वे स्वावलंबी बन सकती है, यदि वे सत्याग्रह सीख

0: तो वह पूर्ण रूप से स्वावलंबी और स्वतंत्र हो सकती है, फिर उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ना रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी से किसी किस्म की सहायता नहीं ले, जरूरत होने पर वह सहायता अवश्य ले, लेकिन यदि संसार उसको सहायता ना करे तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वे निराधार हैं। यदि हम उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करते हुए भी अपने मन को उनसे अलग रखें तो हम स्वावलंबी ही रहते हैं। फिर भले ही हम समस्त जगत का आश्रय लें तो भी पराधीन नहीं बनते। यदि कोई आश्रय नहीं भी देता तो भी हमें लगता है कि कोई बात नहीं, उस समय हम क्रोध नहीं करते और ना किसी की निंदा करते हैं। इसका नाम ही सत्याग्रह है। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। यह बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए इतना ही पर्याप्त नहीं, हमें हृदय से ऐसा महसूस करना चाहिए। भय त्याग का मतलब ये नहीं कि हम जगत की परवाह ना करें, मेरा कोई नहीं है, इस विचार का हमें त्याग करना चाहिए। सबका आधार ईश्वर ही है। स्त्रियों को यही विचार करना है कि वे स्वयं कैसे अपने आप को सबल बना सकें और अपनी निर्बलता को कैसे निकाल बाहर करें।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था स्त्रियों की सबलता पर गांधी के विचार। वाचक स्वर था श्रीमती बरखा थानवी व्यास का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:10 हुए हैं। आरंभ होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 316 से 318 तक का सहस्वर पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

ये था कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इसमें आज की कलाकार होंगी सात्विका मोहन। इसे आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

दिन में 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे काकोरी कांड दिवस, छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो, गर्भावस्था में पोषक तत्वों की भूमिका, संगीत व नृत्य से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और साथ ही साथ वार्ता होगी आज के दौर में महिला की मानसिक स्थिति। वार्ताकार होंगी श्रीमती श्वेता जैन, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत भुषनोई, संयोजन श्री अमित सिंह का।

शाम 5:05 पर कार्यक्रम होगा युवाणी। इसमें आज की बात होगी असफलता से ले सीख। लघु जानकारी होगी विश्व खाद्य कार्यक्रम, रणथंभौर, राष्ट्रीय उद्यान, भारत छोड़ो आंदोलन, WHO और साथ ही साथ रोजगार समाचार और क्विज टाइम। संध्या 7 कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे गवार की उन्नत किस्में व बीज दर, पशु टीकाकरण के लाभ, कुसुम योजना, खेतों में वर्षा जल और संरक्षण पद्धतियां। वार्ता होगी वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने हेतु भारत की कृषि में पादप सूक्ष्म जीव प्राकृतिक क्रांति की आवश्यकता। वार्ताकार सुश्री आशा कुमारी, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा, संयोजन श्री अमित सिंह का। अब से कुछ ही देर में यानी 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें चर्चा के विषय होंगे एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, स्वच्छ शहर स्वस्थ देश, काकोरी कांड, भेंटवार्ता होगी इस पर स्वतंत्रता सेनानी दाऊलाल व्यास से श्री मिलिंद पांडे की बातचीत, संयोजन

7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर कार्यक्रम होगा सौरभ। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता लोक जीवन और लोक संस्कृति। वार्ताकार होंगे श्रीलाल मोहता। 8:45 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। 9:10 पर कार्यक्रम होगा लोक संगीत।

9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मुकुल। 10 बजे होगा फिल्म संगीत और 11 बजे होगा आपकी पसंद आप ही के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। विषय है वर्षा ऋतु में पशुओं में आफरा रोग व बचाव। वाचक स्वर है श्री राम स्वरूप बिश्नोई का।
1: खेती री बातें कार्यक्रम में आज आप हाथ ही करा कि आपने पशुधन रे मायने बिरखरी ऋतु रे मायने न्यारा न्यारा रोग हो जाया करे, जो कि मायने खुरपका है, मुंह पक्का है, और अगलों मोटो रोग जो को है वो है आफरा रोग। आफरे रोग कारण कहीं और उपाय कहीं, इन सर आप बात करें। देखो साहब, सगड़ा पशुपालक हो और गाय भैंस भेड़ बकरी रखो, और बिरखरी ऋतु रे मायने कहीं करे कि अपना जो का पशु डांग रहे बे लालच में आयर का तो अरो चारो गणों खा ले, का दलहनी कोई फसल वे भी खेत में बड़र खा ले। कई बार पशु बरसीम है, लुरसन है, जो को रसीलो घास हुए, चीकनो घास हुए, वो खाणो तो कोई माड़ी बात को नहीं, पर लालच में आयर गणों खा ले जने। बिर मायने जो को मौजूद प्रोटीन है, सेपोनिन है, जिसे जका कारक है बे रुमेन ने तरल पदार्थों बनाए चिपचिपो कर दे, पेट रे मायने की लपलपो और चिस्सिस और चिकनो पदार्थ भेड़ो हो जाए, और बी चिपचिपे पदार्थों गैस बननी जारी रहे और पेट पशु रो फूली जे। कई बार तो पशु रे आहार नाल में कोई अवरोध आ जाए, कोई गिट्टी जे नहीं ची, जने भी पशु ने आफरो आ जाए करे। कई बार कोई पशु रे गठा ने जहाँ घास रे मायने मोटो कोई डांखड़ो आ गयो, कोई आलू है, कोई खाउन वाली चीज जकी भी उगली जी नहीं, अरे बगिटी जी नहीं, जने भी पशु रखे शरीर रे मायने गैस बढ़न लाग जाए, अरे बारे नहीं निकले जन पशु रो पेट फूल और ढोल अड़ जाए उजे। और श्याणा और समझदार लोग इन बात री सलाह देवे कि जब आपने लक्षण दिखे तो उपचार तो आप के करा, आप तो का तो कोई केरोसिन सूंगा, अब थे को केरोसिन लादे को नहीं, पर कोई भी तारपीन रो तेल है वो गिटाणो को नहीं, पशु ने सूंगाणो है। उसी कहीं के पशु रे जो डाउड़े पासे पेट है वो गणो फूली जी, जे आप आंगलिया और जे थापियों बजावा तो यहाँ ढोलगी सी आवाज आई, पशु नीरो चारो चरणों बंद कर दे, चलन फिरन ने दिक्कत आवे, उठी जे बैठी जा कोनी, मोटी मोटी सांस लई, लंबी लंबी हांसा लई, पशु जे दुधारू है तो फिर दूध एकदम कम हो जाए। और श्याणा लोग कहवे कि पशु री जकी हृदय गति है बा तेज हो जाए, पशु आपरे पेट रे कानी बार बार मुंह करी लात मारी, का तो पशु भी आपरे पेट ने चाटी का टांगड़ा बाई, एड़ी जद गंभीर समस्या हुए जन अपन ने लेट नहीं करनी चाहिए और पशु ने तुरंत डॉक्टर साहब ने दिखाना चाहिए, और जो अपना घरेलू उपचार है जो ना अपना प्राथमिक उपचार के वहाँ वे भी करना चाहिए। इन खातर आप कहीं करो कि कदी पशु ने घणो मियो हाथ रो पिसुड़ो पशु चारो नहीं खड़ा होना चाहिए, इन बगत सावधानी रखनी चाहिए। बिया देखो

0: मिनखा ने भी घणो चीकणो और बारीक दाणो नहीं लेवो जोईए, मोटो अनाज खावणो जोईए। पशु रे खातर भी आप मोटो दरदरो पिसूड़ो जो को चाटो है वो में लो, और नीरे चारे में एकाएक कोई बदलाव ना करो। कई बार आप कहीं करा कि आप भी स्वार्थी वहाँ के दूध घणो हुई जन भी ने हरो चारो ज़्यादा खड़ा दा। और जब भी आप दलहनी या लस लस वो हरो चारो खड़ाओ तो एक हागे ना खड़ाओ, थोड़ो हागे भी ने सूखो चारो भी खड़ाओ। और चारे रे सागे कोशिश करो कि एंटी फॉमिन जका तत्व वे बे मिलायर खिलाओ। और ज़्यादा जो समस्या हो जाए तो तुरंत डॉक्टर साहब ने दिखाओ और पशु रो उपचार लेव। आफरो दूर करण तई आप सोयाबीन जो को तेल है वो कदे ही पशु ने ही दो नहीं देवनो, बिरमाई ने 200-500 ml तई मिनरल तेल जिन्हें पैरामीन है वो मिला देव। आफरो ठीक हो जावे जने आप हरो चारो पाछो चालू कर सको, और जत तई जे आफरो रहे तो बिना कई दिन तई आहार वंचित रखो। और आहार जो को है वो बिल्कुल हल्को फुल्को होना चाहिए, बेगो पचन नालो होना चाहिए। आपन दूध घणो चाहिए जन आप कहीं करा कि का तो बिन बेसी खड़ा दा और का हृदय पोल्स रे मायने बाढ़ दा, तो कोशिश आ करो कि पशु ने धीरे धीरे सूखो और हरो दोनों चारों सागे दो। और जो को चाटो है वो चिकनो ने देर दरदरो और मोटो पिसुड़ देवनो चाहिए।
1: ये था कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था वर्षा ऋतु में पशुओं में आफरा रोग व उपाय। वाचक स्वर था श्री रामस्वरूप बिश्नोई का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मौसम कितना सुहाना है और ऐसी ठंडी हवा चल रही है और खुला आसमान देखकर दिल एकदम ताज़ा हो जाता है। मौसम की यह रंगत सीधे हमारे दिल पर असर करती है। जब बाहर का मौसम इतना प्यारा और सुहाना होता है तो दिल के अंदर भी मासूमियत जाग उठती है, बिल्कुल एक बच्चे जैसी जो बिना किसी फिक्र के बस उड़ना चाहता है। ऐसे ही खूबसूरत मौसम और बेफिक्रे दिल के लिए एक गाना याद आता है, तो चलिए मौसम के इस जादू को और बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आज है 9 अगस्त 1925 की वो शाम जब लखनऊ के पास काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोका गया। यह सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के अहंकार पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। श्रोताओं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बैनर तले इसे अंजाम दिया गया था। पर इसे क्यों किया गया? क्योंकि क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हथियार खरीदने थे, जिनके लिए उन्हें धन की सख्त ज़रूरत थी। और क्रांतिकारियों का मानना था कि सरकारी खजाने में जो जनता का पैसा है, उसे वे देश की आज़ादी के लिए वापस ले रहे हैं। इसके मुख्य नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। श्रोताओं, काकोरी कांड, जिसे आपने सुना तो होगा ही और आज भी आपके दिमाग में है कि आप उसको याद रखते भी हैं, लेकिन यह क्यों किया गया था? क्रांतिकारियों का मकसद था कि किसी भी आम नागरिक को बिना नुकसान पहुंचाए वे अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें हथियार खरीदने हेतु पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए उनके ही खजाने को निशाना बनाया था। श्रोताओं, इस घटना को हम भूले तो नहीं हैं, लेकिन उन क्रांतिकारियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। चलिए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी दाऊलाल व्यास से श्री मिलिंद पांडे की बातचीत को आप सुनिए।
1: श्रोताओं, पराधीनता की बीड़ी को चटकाकर स्वाधीनता की हवा में हमने सांस ली, लेकिन इस बीड़ी को चटकाने में हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने बलिदान दिए, कितने दुख झेले और क्या क्या कल्पनाएं थीं। हम जब स्वाधीन होंगे, स्वतंत्र भारत में निवास करेंगे, स्वाधीन भारत की हवा में सांस लेंगे, तो क्या हमारे सपने होंगे, क्या क्या सुख आएंगे। जिन सुख को लाने की कल्पनाओं

0: से उन्होंने संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चार पंक्तियां मैं बोलना चाहूँगा कि 1857 से 1947 तक कितने जूझे और लड़े थे गोली से तलवारों तक, निश्चल मन के विश्वासों को छल रहे फिरंगी सीना तान, सुन दशा हमारी क्या थी जब गोरों ने थामी थी कमान। एक घुटन की स्थिति आ गई थी, छटपटाहट की स्थिति आ गई थी। क्या परिस्थितियां थीं इन सभी बातों से रूबरू कराने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्वतंत्रता सेनानी श्री दाऊलाल जी व्यास को। आपको हम प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: धन्यवाद आपको।
0: दाऊलाल जी, बड़ा विकट समय था और आप लोगों ने बहुत कष्ट सहे, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपके दुख को अगर हम अपना सब कुछ सुख न्योछावर करके भी दूर कर सकें तो हमारे लिए वो एक, जिसको कहें कि चाहे वो भौतिक रूप से देख लें चाहे आध्यात्मिक रूप से देख लें, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन हमें पता है कि उस कष्ट को जो आप लोगों ने झेला भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, वो सामान्य कष्ट नहीं था। हम चाहेंगे उस समय के जो कुछ संस्मरण जो आपने उस स्वाधीनता में आहुतियाँ दी, और आपकी आहुतियों के बल पर आज हम सुख की, चैन की, अमन की सांस ले रहे हैं। वो ऋण अगर पूरा देश, पूरे देश की आज की पीढ़ी अगर चाहे तो उस ऋण को हम चुका नहीं सकते। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आपने जो वीरता दिखाई थी, आप में जो एक दृढ़ता थी, जो उस समय को सामना करने की, वो दृढ़ता अद्भुत थी। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए उस समय के जो संस्मरण, आपने स्वाधीनता संग्राम में कब कदम रखा?
1: मैंने सन 42 में, वैसे मैंने सन 35 में बीकानेर मंडल की स्थापना हुई उस वक्त मैंने रखा। उसके बाद सन 42 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई, उसमें 8-10 आदमी हम ही थे, ज़्यादा कोई था नहीं बीकानेर में, ना कोई हमारे पास नज़दीक आना चाहता था। और हमारी ऐसी दशा थी कि आप भी अगर मिलते तो मुँह फोर के मिलते, हमारे से कोई मिलना नहीं चाहता था, कोई भी व्यक्ति, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। और उसके बाद में सन 42 में 22 तारीख को रघुदयाल गोल को देश ने खड़ा हुआ, 22 को स्थापना करी, 26 को देश ने खड़ा हुआ, 29 को महाराजा को काले झंडे दिखाए गए। और उसी वक्त सुबह सब गिरफ्तार किए गए और उनको, कईयों को गिरा ही बुला बुला कर उनकी वहाँ खूब मरामत की
0: जी।
1: और बाकी 3 आदमियों को जेल में भेज दिया गया, रघुदयाल गोयल, गंगादास कौशिक और दाऊजी आचार्य को, इन तीनों को जेल भेज दिया गया। एक अनूपगढ़ रहा और एक लूण कैंसर में रहा, इस प्रकार तीनों को जेल में भेज दिया गया। और ये तीनों जेल में रहे। हमने अब ये सारी कार्रवाइयाँ, रघुदयाल गोयल ने क्या किया, वहाँ खेजड़े का रास्ता, वहाँ से रोज कागज़ भेजने शुरू किए। तो यहाँ CID ने हमको चारों तरफ घेर लिया था, सुबह गिराई बुलाते, शाम को हमारी मरामत करके हमें छोड़ देते।
0: अच्छा, उनका एक क्रम बन गया था कि सुबह पकड़ लो, फिर इनको मतलब प्रताड़ित करो और उसके बाद छोड़ो।
1: नहीं, मोर्चे पर यूँ बांध देते थे
0: जी,
1: हाथ और पैर दोनों, यहाँ वो कूटते थे, मारते थे हमको, बुरी कहते वो मारते। और सुबह फिर अगर हाजिर नहीं हुए तो बहुत बुरी हालत होती। फिर यहाँ से वार्ड निकला तो मैं दौड़कर 10 दिन तक के लिए गंगा शहर में लुका रहा, 5-10 दिन बीना शहर में लुका रहा, और फिर जयपुर में जाकर कुछ दिन मैंने बिताए
0: जी। मतलब एक तरह से बहुत विषम परिस्थितियाँ रही, पूरे देश में आग लगी हुई थी, पूरे देश
1: में आग लगी हुई थी, सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ आग नहीं फैली हुई थी।
0: जी जी जी। तो अब
1: और मेरे सारा साहब थे, उनको जोधपुर में मिश्रा जी को बाढ़ के मारा गया।
0: तो अब जब पूरी, जब देश में आग लगी थी तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान,
1: आदान प्रदान
0: कैसे होता था?
1: हाँ, बताऊँ,
0: जैसे कोई कहाँ क्या घटना हो रही है, हाँ, आपको निर्देश भी दिए जाते रहे होंगे,
1: क्योंकि सब रियासतों के आदमी में था, उनके हाथ में था।
0: जी जी जी।
1: ट्रेन भी उनकी थी, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब उनके थे, इसलिए अगर आप जा रहे हो कहीं से हमको पता पड़ा तो हमने आपको एक कागज दिया, आप फलन जगह डाल देना इसको। इस प्रकार से हमेशा ये थोड़ा बहुत चलता रहा।
0: उस दौरान आपकी मुलाकात किस किस से हुई?
1: मेरी पटेल साहब से मुलाकात हुई
0: जी,
1: 3 दफे, एक दफे भी नहीं, एक दफे महात्मा गांधी से मुलाकात हुई।
0: महात्मा गांधी से आपकी जो बातचीत रहे हैं, कोई
1: बातचीत
0: स्मरण?
1: नहीं हुई।
0: अच्छा,
1: बातचीत नहीं हुई।
0: हुँ.
1: मुलाकात जरूर हुई
0: जी।
1: अच्छा, और वहाँ सबसे मुलाकात करता रहा।
0: हाँ।
1: भागा हुआ क्या करे आदमी, मरता हुआ क्या नहीं करता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो ये पोजीशन थी हमारी। आज अब ये आप बात कहते हैं ना तो जी मैं बाकी नहीं रहती।
0: नहीं, चलिए, तो निश्चित रूप से हम उस बात को महसूस कर सकते हैं। आप सरदार पटेल से मिले, महात्मा गांधी से मिले, इन लोगों ने आपको कैसे प्रोत्साहित किया, क्या कहते थे?
1: पटेल साहब ने हमको बड़ी पीठ थपथपाई, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम आपके पीछे हैं। सन 44 में देशी राज लोग

0: शायद मिशन हुआ उदयपुर में, तो कहीं से राजस्थान से इन्हें गुणे आदमी वहाँ पहुँचे और वहाँ रघुवरदयाल गोयल भी आया तो उसको कहा कि तुम फौरन बीकानेर चले जाओ, तो वह इलाहाबाद में आकर गिरफ्तार हुआ और हमने लिखा एक बोर्ड बनाकर कि बीकानेर के जुल्म को ख़त्म करो, और शेख अब्दुल आया था उससे काफ़ी घंटे बर्बाद हुई, तो वो गीता पर बहुत बड़ा प्रवचन करा उसने, बहुत तकड़ा
1: शेख अब्दुल्ला ने।
0: हाँ, सोच ही नहीं सकते थे कभी,
1: बहुत बड़ी बात है, बहुत
0: कभी सोच नहीं सकते थे।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे जब आप लोग पलायन करते रहते थे, संघर्षों में जूझे रहते, लोग अंदरूनी रूप से या गुप्त रूप से छुप के आप लोगों को सहयोग भी तो करते होंगे?
0: गुप्त रूप से सहयोग
1: भी तो, करते हाँ, लोग तो
0: जैसे हमें यहाँ आंदोलन शुरू हुए तो मैं आपके पास, आप आए, आपने हमको पैसे दिए लेकिन नाम नहीं,
1: नाम नहीं है,
0: नाम किसी का नहीं, ना कोई रसीद है ना कोई नाम है, सिर्फ एक ईमानदारी के ऊपर आपने दिए, इन्होंने दिए, उन्होंने दिए, वो संसार के लिए पैसे दिए।
1: मतलब आम जनता चाहती थी कि हम स्वतंत्र हों, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
0: रूप से
1: वो आप लोगों को सहयोग करती थी,
0: सहयोग करती थी।
1: मतलब कहीं जैसे छुपना हुआ तो कोई एकदम कहीं
0: वहाँ, जब गंगा सेन पड़ा रहा, भीना सेन में पड़ा रहा, तो सबने सहयोग ही किया।
1: हाँ बिल्कुल। संघर्ष के बाद आपके मन में बहुत सारे सपने होंगे कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा,
0: देश आजाद हो और लोग सब सुखी रहे, हमारी ये भावना थी।
1: जी आपको अब क्या लगता है?
0: अब जो देश में जो प्रगति की है, हमारे यहाँ कुछ था नहीं, तो हमारे देश में जो प्रगति हुई है वो आज देखने योग्य हो गई, चारों तरफ से प्रगति है, रेल में क्या, सड़कों में क्या, आम आदमी में क्या। आज बीकानेर की उस वक्त में पॉपुलेशन कितनी थी?
1: बहुत कम,
0: 30,000
1: बस।
0: मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ लिखित में, जबानी नहीं।
1: हाँ।
0: तो समय है, परिवर्तन है और बड़ा परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: अच्छा एक बात और है, जिस समय आप लोगों ने संघर्ष किया शिक्षा की, जैसे आपने बात की, शिक्षा का प्रचार प्रसार बड़ा कम था, लेकिन हाँ, लेकिन लोगों में देश के प्रति इतनी निष्ठा थी,
0: भावना, सब में देश भावना थी। और आज तो ऐसी स्थिति है कि बीकानेर डेजर्ट था, यहाँ कुछ पैदा नहीं होता था, मरु प्रदेश कहते थे। आज ये नहर आने से चारों तरफ आबादी हो गई, सारी चीज बीकानेर में पैदा हो गई और आज बीकानेर वाले किसी पर निर्भर नहीं रहते, अपने आप ही स्वाभाविक काम कर लेते।
1: दौलाल जी एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि जब उस समय अधिकांश जनता अशिक्षित थी फिर भी देश के प्रति उनकी बहुत अधिक निष्ठा थी, जिसको कहें कि सब कुछ त्याग करने के लिए लोग तैयार थे, न जाने लाखों लोगों ने सर कटाया, किसी ने अपने परिवार के गहने को बेचा, पत्नी के घर बच्चों को सुख को छोड़ के निकले थे, तब भी जो है देश के प्रति उन लोगों को इतना लगाव था। और आज आज जब जनता में अधिकांश लोग शिक्षित हो चुके हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि वो लगाव आज भी है?
0: आज वो लगाव नहीं है, आज देश के प्रति किसी का लगाव नहीं है, अर्थ के प्रति सबका लगाव है।
1: आप जब निकलते थे कि भाई हमें देश को आजाद कराना है तो किस हद तक जाने की सोचते थे आप?
0: हमें तो ये जान को हाथ में हथेली में लेकर चलते थे, कब किसी क्या घटना घट जाए कोई निश्चय नहीं था हमारा जीवन के लिए, हमने कभी आशा ही नहीं की कि हम जिंदे रहेंगे। उस वक्त हमारी ये पोजीशन थी कि आज हम आपके सामने बैठे हैं, 90 साल की एज के करीबन है, आज 90 साल के आदमी की क्या हालत होती है, आँखों से नहीं सूझता, कानों से, हाथ पग, जब वहाँ भी गए हम राष्ट्रपति के यहाँ तो लोगों को रेहड़ियों में लेकर आए।
1: आपको भी माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी साहब ने भी आमंत्रित किया था।
0: हाँ।
1: राष्ट्रपति भवन में।
0: हाँ।
1: आप वहाँ जाके आए हैं।
0: हाँ।
1: वहाँ क्या बातें शेयर की, क्या बातें आप लोगों के बीच में हुई?
0: पहले हरेक प्रांत के कुर्सियाँ लगी हुई थी, उस पर जाकर बैठ जाओ, पहले ही पहले आए वहाँ राजनाथ सिंह सेंट्रल के होम मिनिस्टर, उसके बाद आए उपराष्ट्रपति, और उसके बाद आए मनमोहन सिंह, उसके बाद आए प्रधानमंत्री जी।
1: सम्मानित किया आप लोगों को, सम्मान दिया वहाँ पे,
0: बहुत ज्यादा सम्मान दिया उन्होंने,
1: लगा ना कि चलिए आपने जो इतना सब कुछ किया तो वो देश समझ रहा है, वो हमारे राष्ट्रपति महोदय हो चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो।
0: हाँ। और सब एक एक व्यक्ति से हाथ मिलाया और दुपट्टा हमको ऊपर डाला,
1: दुपट्टा उठाया।
0: हाँ चलिए, उसके बाद में उपराष्ट्रपति जी आए, उसके बाद में मनमोहन सिंह जी, एक एक व्यक्ति से मिले, उसके बाद में आए प्रधानमंत्री जी।
1: जी दौलाल जी, एक जिसको कहें कि बहुत व्यापक दृष्टि हो जाती है जब आदमी सबके बारे में सोचने लगता है, अपने से बाहर निकल जाता है, अमूमन आज की सोच है अपने तक सिमटे रहने की। और आप जैसे लोग जिन्होंने पूरे इस मिट्टी के लिए, इस देश की धरती के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तो एक बड़ी व्यापक सोच हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के लोगों के लिए, आपका क्या संदेश होगा कि क्या करना चाहिए ताकि देश के लिए जो सपना आप लोगों ने देखा था वो सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो, देश चारों तरफ चहुमुखी अपना विकास करें?
0: देश तो विभाग कर ही रहा है, लेकिन वो जो हमारी भावनाएं थी वो अब नहीं रही, जिस चीज को हम लेकर चले थे वो आज इस युग में नहीं है।
1: लेकिन उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आए वो भावना?
0: ऐसा है कि देश बहुत बड़ा है और

0: बहुत छोटे आदमी हैं, उसका मुकाबला हमें अब करने में हमारी समर्थ नहीं है। इसीलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए नवयुवकों का और आपका साथ चाहिए।
1: बहुत सही बात कही दाऊलाल व्यास जी, और ये आपका बड़प्पन है कि आप छोटे नहीं, आप बल्कि जिसको कहते हैं ना कि एक जो अणु होता है, अणु में ही इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो बहुत सारी ऊर्जाओं को पूरी समाज में कहें कि विस्तरित कर देता है और लोगों को ऊर्जावान बना देता है। आप तो हमारे ऊर्जा के वो स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम देश को एक विकसित देश के रूप में या उस श्रेणी में ला खड़ा करेंगे। हम चार पंक्तियाँ कहेंगे आपके संघर्षों को देखते हुए कि कोटि कोटि सपने पुरखों के भोर भई फिर क्या सोना, ऋण है कितना उन थाती का, सोए तो उनको है खोना, देना है जितना दे जाएं तब तो स्वतंत्रता है पाना, बस लेते रहे दिए कुछ ना फिर बीड़ी में जकड़ा जाना। तो हम जितना कुछ त्याग कर सकें वही सही मायने में स्वतंत्रता है, देश को जितना कुछ दे सकें। दाऊलाल जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने संघर्ष की जो कथा कही और हम समझते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बहुत अधिक प्रेरणादायक रहेगी और लोग आपसे प्रेरित होकर तन मन धन से देश के विकास में, देश की अस्मिता के लिए और देश की स्वतंत्रता को इसी तरह कायम रखने के लिए जुड़ेंगे।
0: ऐसा ही हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारी आत्मा तो ये कहती है।
1: बिल्कुल, आपकी प्रेरणा से हम समझते हैं हमारे सारे श्रोता जो है इस बात को से प्रेरित होंगे और आप इसी तरह हमारे यहाँ आते रहें, लोगों को प्रेरित करते रहें, लोगों को जगाते रहें। आपने अलख जगाया है, ये अलख हमेशा जगती रहे,
0: भगवान ऐसा ही करे।
1: बिल्कुल, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता सेनानी दाऊलाल व्यास से श्री मिलिंद पांडे की बातचीत। श्रोताओं, शहादत केवल सांसों का थम जाना नहीं, शहादत तो वह अमरता है जो किसी व्यक्ति को इतिहास के पन्नों में सदा के लिए जीवित कर देती है। शहीद हमारे देश का गौरव और असली नायक होते हैं। वे अपने परिवार और खुशियों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं। शहीदों की सांसें भले ही थम जाती है, लेकिन वे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, बात करते हैं अब पोषण के। श्रोताओं, 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण के सुधार के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा का योजना का शुभारंभ भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसके तहत बच्चों और माताओं में पोषण के स्तर को सुधारना है और शिशुओं की जो मृत्यु दर है उसे घटाना है, उसके लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल और समय पर उनका टीकाकरण हो, इसके लिए इस योजना का की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना भी है। श्रोताओं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और आंगनवाड़ी के जरिए प्री स्कूल शिक्षा देना आवश्यक हो गया है। शिशु मृत्यु दर को कम करना और साथ ही साथ कुपोषण जो है उसे भी मिटाना है। श्रोताओं, इसके लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र हो, चाहे किसी भी तरह की सुविधा हो, वो उन तक पहुँच नहीं पाती है। इसीलिए इस योजना पर बहुत अधिक जोर दिया गया है ताकि हर समय पर महिलाओं और बच्चों के लिए ये सब चीज़ें उन तक पहुँच सके, क्योंकि महिलाएँ ही अपने परिवार की नींव होती हैं। यदि वह स्वस्थ रहेंगी तो अपने पूरे परिवार को भी स्वस्थ रख सकेंगी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। युगल स्वर है लता मंगेशकर और कुमार शानू का। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, पर इन मुश्किलों में हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत मिलती है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये जीवन है, इसे हंसकर गुजारना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
7: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत

0: तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के KJ हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा, विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और EV कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक

0: जिम्मेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन की एरियाज। हर घर तिरंगा कैंपेन बिगिंस टुडे, कोइंसाइडिंग विद 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अपॉइंटमेंट ऑफ 30 जजेस फॉर हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास, कैलकटा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका नोटिफाइड। अमरनाथ यात्रा टू रिमेन सस्पेंडेड फ्रॉम बोथ पहलगाम एंड बालताल रूट्स ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक्स एंड फोरकास्ट ऑफ बैड वेदर। IMD इश्यूज ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी रेनफॉल इन उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ टुडे। साग्निक रॉय एंड सायंतन कुशारी विन गोल्ड मेडल इन अंडर 31 पेयर्स एट 9th वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप्स। अनदर न्यूज इन डिटेल। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
2: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has emerged a true people's movement that inspires citizens across regions and communities to celebrate the tricolour as a symbol of India's unity, honour and collective national identity. A report. This year,
3: India's campaign holds a special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, bringing together national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. As part of the Independence Day commemorations, the government will also observe Partition Horrors Remembrance Day on August 14th across

0: appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सौरभ। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। वार्ता है लोक जीवन और लोक संस्कृति। वार्ताकार हैं श्रीलाल मोहता।
2: लोक को केंद्र में रखकर जो अध्ययन हो रहे हैं उनमें अधिकतर या तो रूटीबद्ध है या फिर इस विषय का पिष्टपेषण मात्र। लोक और लोक जीवन के बारे में जितनी ही बढ़ चढ़ कर मान्यताएँ स्थापित की गई हैं उतनी ही दिग्भ्रम की स्थिति भी बढ़ी है। इसका एक कारण यह रहा होगा कि जो पारंपरिक रूप से लोक का अध्ययन कर रहे हैं वे आधुनिक या वर्तमान दृष्टि से परहेज करते हैं और जो वर्तमान संवेदना और वैज्ञानिक दृष्टि लिए वे इसका अध्ययन कर रहे हैं वे परंपरा की अनदेखी करते हैं। वास्तव में साहित्य को लोक के रूप में एक नया विशेषण मिला है। साहित्य में भाषा और स्थल के भेद भौगोलिक होते हैं, किंतु तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह लोक साहित्य किस प्रकार का साहित्य है। क्या लोक विशेषण किसी अन्य प्रकार के साहित्य की संभावना मानता है? भारतीय साहित्य में तो हमें परंपरा से लोक और वेद का कुछ विभेद विदित होता है कि लोक और वेद की दो अलग परिपाटियां हैं। महाभारत में लोक वेद विधि में विरोध को बताने वाले कई काव्य मिलते हैं। वेदाच वैदिका शब्दाः सिद्धा लोकाच लौकिकाः। लोक तथा वेद का पुराना अंतर यह बताता था कि जो वेद में स्पष्टतः नहीं है वह यदि लोक में हो अथवा जो वेद में है इसके अलावा लोक में हो वह लौकिक है। यहाँ वैदिक से भिन्न शेष समस्त बातें लौकिक कहलाएगी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कहना है कि सही लोक दृष्टि कोई अलग दृष्टि नहीं है, वह न तो शास्त्र के विरोधी है और न शास्त्र से निरपेक्ष है। कवि या साहित्यकार के लिए ये जरूरी है कि लोक और शास्त्र दोनों का अच्छी तरह से निरीक्षण करें। जो निरीक्षण करेगा वही अच्छी रचना भी कर सकेगा। आचार शास्त्रों में यह बात कही गई है कि लोकाचार को, कुलाचार को, देशाचार को शास्त्र में विहित आचार से कम महत्व नहीं देना चाहिए। दोनों को साधने में ही व्यवहार समरस और सामंजस्य होता है। लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना और पांडित्य के अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रभाव में जीवित रहता है। हिंदी का लोक और अंग्रेजी का फोक एक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसे समानार्थी पद मान लिया गया है। लोक शब्द में अंतर्निहित जो ध्वनि या व्यंजना है उसकी तह में जाकर उसे समझने का प्रयास हमने कम ही किया है। इसका एक ही कारण है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग पहचान होती है, इसलिए एक भाषा के समानार्थी शब्द का प्रयोग जब हम दूसरी भाषा में करते हैं तो उस शब्द की अपनी जो निजी विशेषताएं होती है उसका लोप दूसरी भाषा में हो जाता है। फोक, रिलीजन और कल्चर आदि इसी प्रकार के कुछ शब्द हैं और इन शब्दों के पर्याय लोक धर्म और संस्कृति इनकी सीमित ध्वनि को ही अभिव्यक्त करते हैं, जबकि हमारे यहाँ और हमारे साहित्य के संदर्भ में भी इनमें जो अर्थ विस्तार है उसका संकुचन होता है। भारतीय जीवन के विभिन्न स्रोतों का मूल उद्गम लोक संस्कृति ही रही है। संस्कृति जब अपने आप में बहुत ही व्यापक और गहरे अर्थ लिए हुए हैं। संस्कृति शब्द का अर्थ है सम्यक कृति। संस्कार या संस्करण का भावार्थ भी संस्कृति के अर्थ के अंतर्गत ही आ जाता है। भारतीय

संस्कृति का संस्कार भी लोक संस्कृति के माध्यम से ही हुआ है। जिस प्रकार समष्टि में व्यष्टि तत्व तो व्याप्त है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में लोक जीवन की व्याप्ति है। इस अर्थ में संस्कृति और जीवन को हम एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं, और इसीलिए भारतीय संस्कृति में सनातनता के आग्रह पर अत्यधिक बल दिया जाता रहा है। इसका आधार तो जन समुदाय के मानस में स्थित चिरंतन भावनाएं हैं, और लक्ष्य है सनातन मूल्यों की स्थापना करना। हमारी संस्कृति ये

है। इसका आधार तो जन समुदाय के मानस में स्थित चिरंतन भावना ही है और लक्ष्य है सनातन मूल्यों की स्थापना करना। हमारी संस्कृति ये मानती रही है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इसलिए इन दोनों में संबंध स्थापित करना ही मानव धर्म है। लोक दृष्टि इसीलिए आवश्यक है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति जन जन की धरोहर है। अन्न जल और सांस की तरह वह जन जन के जीवन का अभिन्न अंग है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में लोकचित्त लोकमानस का अध्ययन करना अत्यंत रोचक किंतु महत्वपूर्ण विषय है। लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में सर्वाधिक चिंतनीय तत्व लोकमानस ही है। यही लोक साहित्य का मानक निर्धारक तत्व भी है। लोकचित्त या लोकमानस के दो प्रधान लक्षण होते हैं, एक तो यह कि लोकमानस विवेकपूर्वी होता है, दूसरा यह कि मिस्टिक या रहस्यशील होता है। इन दोनों लक्षणों के पेटे प्राग कल्पना, सर्वात्मभाव, जादू टोना तथा आनुष्ठानिक विचार आ जाते हैं। लोक साहित्य के निर्माण में एक सामूहिक लोकमानस की कल्पना अनेक विद्वानों ने की है। उनकी विचारधारा के अनुसार लोकगीतों तथा लोक कथाओं आदि की रचना लोक एक साथ करता है। उनके निर्माण में लोक प्रतिभा के सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है। डैनिश भाषाविद जेस्परसन अपने एक वक्तव्य में उक्त मत को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि किसी भी प्रकार के लोक साहित्य की रचना अंततः कोई एक व्यक्ति ही करता है, बाद में उस रचना में परिवर्तन और परिवर्धन भले ही पूरा समाज करता रहे। उनके इस वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि क्या हम लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य को एक ही श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से दोनों की रचना अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित होती है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करें तो फ्रेंज़ बोआज के इस कथन को भी ध्यान में रखें कि आदिम मनुष्यों तथा शिष्ट मनुष्यों के चिंतन प्रक्रिया में कोई तात्विक भेद नहीं होता, तब क्या उनकी रचनाओं के स्तरों में कोई भेद होता है। इधर पिछले कुछ वर्षों से लोक संस्कृति को एक बाज़ार मिल गया है। बाज़ार में प्रत्येक चीज़ बिकाऊ होती है, इसलिए लोकगीत, लोकवार्ता, लोक कलाओं व उनके शिल्प का व्यवसाय धड़ल्ले से चल पड़ा है। यह सही है कि समय के साथ कलाओं में परिवर्तन होता है। आज के युग में आर्थिक दबाव भी मनुष्य पर कम नहीं होते। इन दबावों के रहते लोक कला और लोक जीवन की शैली में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि लोक कला और लोक जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लोक कला प्रकृति रूप में ही सुरक्षित रहनी चाहिए, जबकि दूसरे मत को मानने वाले विद्वानों का यह कहना है कि लोक कलाएं और साथ ही लोक जीवन भी दिक और काल में परिवर्तन के साथ साथ अपने आप में भी परिवर्तन लाते हैं और यह परिवर्तन लाजिमी है। वे मानते हैं कि लोक परंपरा गंगोत्री से निकली गंगा की तरह है, जो अंत में गंगा सागर में समाहित होती है और फिर बादलों के रूप में बरसकर हिम बनकर गंगोत्री से बूंद बूंद टपक कर गंगा का रूप धारण करती है। इसी का नाम परंपरा है। गंगा का जो ठहर कर एक गड्ढे में एकत्रित हो जाता है उसमें सड़ांध उत्पन्न हो जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि लोक संस्कृति की परंपरा में किसी प्रकार की सड़ांध पैदा नहीं होती है। दरअसल प्रत्येक लोक के मन में कुछ न कुछ नया रचने की क्षमता और आकांक्षा होती है। वह बया के घोंसले की तरह एक ही प्रकार के रचने की शैली से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वह अपने रचे में हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहता है। यह उसकी स्वाभाविक वृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक में जो सृजन होता है वह हमेशा दिक और काल को महत्व देता है। लोक का परिवेश या प्रकृति से जो संबंध बनता है उसी से सृजन पनपता और विकसित होता है। आज लोक कलाओं और जीवन पर आधुनिकता का प्रभाव और दबाव बढ़ रहा है, हम इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। आज लोक में पहले जैसी सामूहिकता की भावना नहीं है। आज हर व्यक्ति भले ही वह लोक समूह से संबंधित हो या विशिष्ट जन से, विशेषीकरण के उदय ने लोक संस्कृति और लोक कला के रूप को ही बदल दिया है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में आए बदलाव ने लोक कलाओं और लोक संस्कृतियों को झकझोरा तो है, लेकिन उनकी अदम्य जीवन शक्ति और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें काल कवलित होने से बचा लिया। लेकिन जब हम उक्त दावा करते हैं तो कहीं हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि इस प्रक्रिया में कुछ लोक संस्कृतियां नष्ट हो गई तथा यह भी कि कुछ लोक कलाओं के रूप भी लुप्त हो गए, किंतु इतना होते हुए भी यह भी सच है कि उनका काफ़ी बड़ा भाग
थोड़े बहुत बदलाव के साथ।

0: आज भी जीवित है।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ, इसके अंतर्गत आपको सुनवा रहे थे वार्ता लोक जीवन और लोक संस्कृति। वार्ताकार थे श्रीलाल मोहता। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत।

ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: कृपया प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को संबोधित किया, कहा राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना परचम फहराया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की झड़ी। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: तिरंगा हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानी है, हमारे वीर जवानों की शहादत की निशानी है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है।

0: बोल। साल 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। इधर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में आज राज्य स्तरीय तिरंगा रैली निकाली जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन होगा। ये रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर रामनिवास बाग निकास गेट से सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पुलिस, आर्मी के जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित करीब 10,000 नागरिक भाग लेंगे। समाचार कक्ष से डॉक्टर ज्योति पारीक।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि अरुंधति चौधरी, यशवीर सिंह, राहुल शर्मा, मोना अग्रवाल और संध्या विश्नोई राजस्थान के गौरव हैं। इनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री कल जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में कॉमनवेल्थ 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर में बन रहे महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय से प्रदेश में खेलों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
2: खेल के क्षेत्र में जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय खेल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान का केंद्र बनेगा। अब तक 3,540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिले। इस नीति के तहत हमारी सरकार द्वारा 186 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।
1: आज विश्व आदिवासी दिवस है। ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा रखी गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने और उनके

0: परंपराओं के संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आदिवासी दिवस को लेकर वहाँ लोगों में उत्साह का माहौल है।
1: ढोल कुंडी शहनाई विभिन्न वाद्य यंत्रों की गुंज से वागड़ अंचल चारों ओर से गुंजयमान हो चुका है। जल जमीन जंगल और पर्यावरण का संरक्षण देने, सिर पर पगड़ी, हाथों में तीर कमान, कमर में लटकी तलवार, पीठ पर ढाल, पैरों में घुंघरू, ढोल की थाप पर थिरकते आदिवासी बरसों पुरानी संस्कृति परंपराओं का निर्वहन करते हुए कहीं गैर नृत्य तो कहीं राणा पुंजा भील वीर कालीबाई गोविंद गुरु की प्रतिमाओं पर मल्यार्पण के साथ नमन कर विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। आज भी कई जिलों में बरसात की झड़ी लगी हुई है। राजधानी जयपुर में कल रात से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। चूरू के सादुलपुर, रतनगढ़ और सरदार शहर में भी अच्छी बारिश हो रही है। यहां निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से तीन दिन तक दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ हिस्सों में मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
2: देखिए, पिछले दो दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
0: जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। इस साल यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 4,80,000 से ज्यादा हो गई है। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होना है। बाड़मेर में कल एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर कुर्जा फाटे के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क पर गिर गए। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने चारों युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों व्यक्ति बालोतरा जिले के धोरीमन्ना इलाके के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए जजों की नियुक्ति की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। नवनियुक्त जज जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में जजों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को संबोधित किया। कहा, राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना परचम फहराया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की झड़ी। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट।

0: इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।

जय हिंद प्यारे बच्चों। अरे अरे, उठ तो गए ना आप सब, या अभी भी तकिए से दोस्ती निभा रहे हैं? वैसे आज तो रविवार है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि कल रात सोते समय आप में से कितने ही बच्चों ने मन ही मन कहा होगा, वाह कल तो आराम से उठेंगे, ना स्कूल जाने की जल्दी, ना होमवर्क की टेंशन। और अगर ऐसा सोचा था तो बताइए, आज सूरज पहले जागा या आप? चलिए अब जो भी हो, आंखों की नींद झटक दीजिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ पल होने वाले हैं सिर्फ आपके नाम। मैं हूं आपकी अपनी दीदी नेहा गोस्वामी और आप सुन रहे हैं बच्चों अपना प्यारा कार्यक्रम मुकुल। हर रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं ढेर सारी मस्ती, प्यारे प्यारे गीत, मजेदार बातें और कुछ ऐसा जो आपको मुस्कुराने के साथ साथ एक प्यारी सी सीख भी देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, और गीत के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी आपके एक ऐसे दोस्त से जो ना तो आपके साथ स्कूल जाता है, ना आपके साथ खेलता है, लेकिन हर रोज आपके आसपास रहता है। आप उसे देखते भी हैं, जानते भी हैं, बस कभी कभी उसकी असली पहचान पर ध्यान नहीं देते। तो जरा सोचिए कि कौन है वो प्यारा सा दोस्त, और साथ साथ सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: तो बच्चों, इस गीत से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ऐसे दोस्त से मुलाकात करवाऊंगी रेडियो के माध्यम से, जो आपके आसपास रहता है, आपसे हर रोज मिलता भी है, बस कभी अपनी बात नहीं कह पाता। वो ना तो स्कूल जाता है, ना खेलता है, ना हंसता है, फिर भी पूरे दिन सबका काम करता है। आज मैंने सोचा क्यों ना उसकी चुप्पी तोड़ी जाए। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका दोस्त आपसे क्या कहने आया है।
1: अरे नहीं, मुझे बख्श दो। हाँ, माना मैं डस्टबिन हूँ, हर तरह की गंदगी को अपने अंदर समेट लेता हूँ, पर मेरे भी अपने उसूल हैं, मेरी भी अपनी गरिमा है।
0: अरे अरे डस्टबिन, रो क्यों रहे हो? हमारे प्यारे बच्चे बहुत समझदार हैं, तुम उनको शांति से अपनी बात समझाओगे ना, तो वो जरूर समझ जाएंगे। तो चलो, सबसे पहले अपने आंसू पोछो और फिर आराम से हमारे प्यारे बच्चों को अपनी बात बताओ।
1: अच्छा तो ठीक है, सुनो ध्यान से बच्चों, जब भी गीला कचरा डालो तो मेरे हरे रंग के कपड़ों को पहचानो, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन और फलों के छिलके अगर मुझमें डालोगे तो उनसे पौधों के लिए खाद और बायोगैस बनाई जा सकती है, और इस

0: से हमारी धरती भी खुश रहती है। और जब सूखा कचरा हो जैसे प्लास्टिक, कागज, पॉलिथीन, तो नीले रंग के कपड़ों को पहचानना। अगर ये मुझ में डालोगे तो ऐसा कचरा रिसाइकिल होकर फिर से काम आ सकता है। और हाँ, अगर प्लास्टिक या पॉलिथीन इधर उधर फेंक दोगे ना, तो कोई गाय, कुत्ता या दूसरा पशु उसे खा सकता है, जिससे वो बीमार पड़ सकता है। बस मुझसे इतना वादा कर लो कि आज के बाद कचरा सही डस्टबिन में ही डालोगे। यकीन मानो, तुम्हारी ये छोटी सी आदत हमारी धरती को बहुत बड़ी मुस्कान देगी। तो बच्चों, मानोगे ना डस्टबिन की बात?
1: हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे हमारे प्यारे बच्चे।
0: थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय। तो बच्चों, कैसा लगा आज हमारे अनोखे मेहमान से मिलकर? अब जब भी डस्टबिन दिखे ना, उसके रंग को जरूर पहचानिएगा, क्योंकि समझदार बच्चे वही होते हैं जो स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। तो चलिए,

नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे हमारे प्यारे बच्चे। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय। तो बच्चों कैसा लगा आज हमारे अनोखे मेहमान से मिलकर? अब जब भी डस्टबिन दिखे ना, उसके रंग को जरूर पहचानिएगा, क्योंकि समझदार बच्चे वही होते हैं जो स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत सोच को अपने दिल में बसाए रखिए और अब सुनिए एक प्यारा सा गीत जो आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल ले आएगा।

पहले हमने अपने दोस्त डस्टबिन की बातें सुनी, है ना बच्चों? उसने हमें बताया कि अगर हम गीले और सूखे कचरे को सही डस्टबिन में डालेंगे तो हमारी धरती भी मुस्कुराने लगती है। और जानते हो बच्चों, जब धरती मुस्कुराती है ना, तो आसमान में छाए बादल अपनी रुई जैसी पोटली खोल देते हैं, ठंडी ठंडी हवा कानों में कुछ गुनगुनाती है और सावन रिमझिम फुहारों के साथ हमारे आंगन में दस्तक दे देता है। आप भी इंतजार कर रहे हैं ना जोरदार बरसात का, है ना? अच्छा जरा बताना तो, अभी जो थोड़ी थोड़ी बरसात आ रही है ना रोज, उसमें कौन कौन भागा छत में भीगने को और किसने किसने कागज की नाव बनाई, ये सोचकर कि जोरदार बरसात आएगी तो हम उसे तैराएंगे। अरे मुझे तो लग रहा है कि अभी भी कोई नन्ना दोस्त खिड़की से झांक रहा है कि जोरदार बरसात आए और वो छप छप नहाए बरसात में।

अब जोरदार बरसात तो जब आएगी तब आएगी बच्चों, पर हम अपनी कल्पनाओं की रंग बिरंगी छतरी को खोल देते हैं और चलो मेरे साथ मस्ती भरी सावन की दुनिया में। सुनिए एक प्यारी सी कविता, सावन आया मस्ती लाया, रिमझिम रिमझिम बूंदे आई संग अपनी मुस्काने लाई, बादल बोले आओ आओ खुलकर तुम भी धूम मचाओ, छप छप पानी दौड़ लगाए हंसते हंसते गीत सुनाए, कागज की एक नाव बनाई लहरों ने भी ताली बजाई, मोर नाचा पंख पसारे मेंढक बोले सुर में सारे, पेड़ों ने पहनी हरियाली धरती लगने लगी निराली, भीनी भीनी मिट्टी महकी मन की बगिया भी फिर चहकी। तो बच्चों कैसी लगी सावन की ये मस्ती भरी कविता? तो इस सावन खूब मुस्कुराइए, कागज की नाव बनाइए, बारिश की फुहारों का आनंद भी लीजिए, लेकिन लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफाई और प्रकृति का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि स्वच्छ धरती पर ही सावन की हर बूंद सबसे प्यारी लगती है। और अब सावन की इस रिमझिम मस्ती को जरा सुरों में भी महसूस करते हैं।

बच्चों तो सावन आ गया है ना, और उम्मीद है कि जोरदार बारिश भी जरूर होगी और धरती भी हरी भरी हो जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि बारिश हर दिन नहीं होती और हर प्यासी चिड़िया को हर समय पानी भी नहीं मिल पाता। इसलिए अपने घर की छत, बालकनी, आंगन या खिड़की के पास पानी से भरा एक छोटा सा कटोरा रखना कभी मत भूलिएगा। क्या पता आपके इस छोटे से प्रयास से किसी नन्ही सी गौरैया की प्यास बुझ जाए। तो क्या आप भी एक नन्ही सी गौरैया की बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनना चाहेंगे? तो सुनिए। एक बुजुर्ग महिला थी, उनका नाम था सरला। उन्हें पेड़ पौधों और चहकती गौरैयों से बहुत प्यार था। स्कूल से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटी सी सुंदर सी बगिया बना ली थी। हर सुबह वे पौधों में पानी देती और गौरैयों के लिए दाना पानी रखना कभी नहीं भूलती थी। धीरे धीरे उनकी बगिया नन्हे गौरैयों का भी प्यारा सा घर बन गई। एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ी, सरला जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वे बगिया में नहीं जा सकी। शाम को उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ गौरैया खाली पड़े पानी के बर्तन के पास चुपचाप बैठी थी। उन्हें देखते ही सरला जी समझ गईं कि वे प्यासी हैं। अपनी तबीयत की परवाह किए बिना वे धीरे धीरे बाहर आईं। उन्होंने मिट्टी के प्याले में ठंडा ठंडा पानी भरा, थोड़ा सा दाना रखा और फिर मुस्कुराकर दूर खड़ी हो गई। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में गौरैया फुदकती हुई आई। कोई पानी पीने लगी, कोई अपने पंख भिगोकर गर्मी से राहत पाने लगी। उनकी मीठी मीठी चहचहाहट से पूरी बगिया फिर से खिल उठी। ये देखकर सरला जी के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान लौट आई। उस दिन के बाद उन्होंने तय कर लिया कि उनकी बगिया में पक्षियों के लिए पानी कभी कम नहीं पड़ेगा। उन्हें देखकर पड़ोसी भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने घर के बाहर पानी रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला फिर से गौरैयों की चहचहाहट से गूंजने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खुशियां हमेशा बड़े काम करने से ही नहीं मिलती। कभी कभी एक छोटा सा मिट्टी का प्याला, थोड़ा सा पानी और किसी के लिए किया गया एक छोटा सा काम भी ढेर सारी खुशियां ले आता है। तो इस सावन आप भी एक छोटा सा संकल्प लीजिए बच्चों कि अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में पक्षियों के लिए पानी से भरा एक कटोरा जरूर रखेंगी। हो सकता है कि आपकी रखी हुई वही छोटी सी कटोरी किसी नन्ही गौरैया के चेहरे अरे नहीं, उसकी प्यारी सी चहचहाहट की वजह बन जाए।

अब बच्चों आपने कविता भी सुन ली, कहानी भी सुन ली और अपने दोस्त डस्टबिन की बात भी सुन ली, पर अब समय है कुछ रोचक जानकारी का। और ये बारिश से जुड़ी रोचक जानकारी इतनी मजेदार लगेगी ना आपको कि आप भी कह उठेंगे, अरे वाह दीदी क्या जानकारी दी है। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी ऐसे स्थान हैं जहां साल भर कभी ना कभी बारिश होती ही रहती है। यही वजह है कि इन्हें दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले इलाकों में गिना जाता है। और एक बात, बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज की किरणें पानी की छोटी छोटी बूंदों से होकर गुजरती है और सात सुंदर रंगों में बिखर जाती है। अच्छा बच्चों क्या आपने कभी गौर किया है कि बरसात शुरू होते ही मेढक टर्रे टर्रे करने क्यों लगते हैं? दरअसल ये उनका एक दूसरे से बात करने और अपने साथियों को बुलाने का तरीका होता है। और घोंगे वे भी बारिश में ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें नमी बहुत पसंद होती है, इसलिए बारिश आते ही वे अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? बारिश की पहली बूंद पड़ते ही मिट्टी से जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना, उसे पेट्रिकोर कहा जाता है। यही खुशबू बारिश को और भी सुहाना बना देती है बच्चों। तो कैसी लगी आज की रोचक जानकारी? उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया भी सीखा होगा और इस सावन प्रकृति से दोस्ती भी पक्की करेंगे आप सब, है ना?

तो बच्चों यही थमता है आज का सफर। उम्मीद है आज की बातें आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में कुछ नया करने का उत्साह छोड़ गई होंगी। फिर मिलेंगे नई सुबह और नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए अपनी नेहा दीदी को दीजिए आज्ञा। जय हिंद।

ये था कार्यक्रम मुकुल। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है पद्मावत। स्वर नीति मोहन का है। इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ और गरिमा ने।

0: आइए अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। स्वर जावेद बशीर का है, इस गीत को लिखा है रजत अरोड़ा ने।
1: दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है हीरो पंती। स्वर मोहित चौहान का है, इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: श्रोताओं, अब सुनते हैं मनाली ठाकुर को। फिल्म का नाम है लुटेरा। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: आइए अब सुनते हैं गदर फिल्म से ये गीत। युगल स्वर है प्रीति उत्तम और उदित नारायण का। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है उत्तम।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे सांवरिया फिल्म से साहिल हाडा को। आइए अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है सनम रे, स्वर मिथुन का है और इस गीत को लिखा है मिथुन ने और धुन भी मिथुन ने ही बनाई है।

अभी आपने हाईवे फिल्म का एक गीत सुना, स्वर था एआर रहमान का। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में फैनी खान फिल्म का गीत।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: अभी आपने मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत सुना। युगल स्वर थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के। गीत के बोल असद भोपाली ने लिखे थे, संगीत राम लक्ष्मण का था। इस गीत को सुनना चाहते थे मसीता डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा सुराणा मोहल्ला बीकानेर से कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अभाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद दम्मानी ने। लीजिए अब सुनिए सुदेश भोंसले की आवाज में चाहत फिल्म का गीत। युगल स्वर है देवांग पटेल का। माया गोविंद के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मल्लिक ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं चुनगुरा का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज नदीम, नदीन सादाब, एस जाकिर हुसैन बाव। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
1: ओ डैडी कूल इट, ओ कूल इट, कूल इट, ब्रेक इट, बंक इट, ब्रेक इट, बंक इट।

लीजिए अब सुनिए, हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। स्वर है लता मंगेशकर का। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं बल्लभ गार्डन बीकानेर से एलसी शहजादा, कमला देवी पंवार, लालचंद पंवार, अरुणा रानी पंवार। इसी गीत को सुनने के लिए अली का डबवाली से पत्र लिखा है बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी ने।

अभी आपने हीरो फिल्म का गीत सुना। स्वर था अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों का। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गीत को सुनना चाहते थे पवनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा, गीता रानी सोनगरा, सीता रानी, मूलचंद सोनगरा, प्रथम राज, हंसराज, मनोहर लाल सोनगरा, मुकेश आकाश सोनगरा और मिस्त्री सीताराम पवार। इसी गीत को सुनने के लिए पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें पत्र लिखा है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। लीजिए अब सुनिए घुंघरू फिल्म का गीत। स्वर है आशा भोंसले का, गीत के बोल प्रभा ठाकुर ने लिखे हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोटगेट बीकानेर से ओंकार चंद सरपटा, संपत ताराचंद सरपटा, विशाल सनी सरपटा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पाबूबारी बीकानेर से लालचंद जैदिया, सुधा जैदिया, कविता जैदिया और जितेंद्र जैदिया।

फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए यशुदास की आवाज़ में टूटे खिलौने फिल्म का गीत। बोल कैफी आजमी ने लिखे हैं, संगीत बप्पी लहरी का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज और करनाल से जग्गी दुआ। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बीकानेर से जयनारायण व्यास कॉलोनी से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही और गौरव शाही।

कार्यक्रम का अगला गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में है। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत नदीम सुरवन का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बीकानेर से मुकेश श्योता, हरीश श्योता, पिंकी श्योता और राकेश श्योता। इसी गीत को सुनने के लिए लालगढ़ बीकानेर से हमें पत्र लिखा है असगर अली पंजाबगीर, मोहम्मद रज्जाक पंजाबगीर, अब्दुल सत्तार, बेबी मुमताज, निसार अली, खातून बेगम और जैतून बेगम ने। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुजैन खींची, मोहम्मद आजम खींची, अकमल हुसैन भियानी, अमजद अली भियानी। इसी गीत को सुनने के लिए कमला कॉलोनी बीकानेर से हमें पत्र लिखा है सुभाष खत्री एडवोकेट, तरुण खत्री, वर्षा खत्री, जोय खत्री ने। रामपुरा बस्ती बीकानेर से ये गीत सुनना चाहते हैं रमजान अली लखारा, आशा लखारा, अमीर रहमान लखारा, संजीव पारासर, फूसाराम छबीला और गोमती देवी छबीला। तो आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

सरस्वती चंद्र फिल्म में लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है।

0: यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य

0: राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

दिन में 12:10 पर श्रोता सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। इसमें आज आप काकोरी कांड दिवस पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही छोटी छोटी बातों से परेशान न हो और गर्भा अवस्था में पोषक तत्वों की भूमिका विषय पर बातचीत की जाएगी। इसमें आज आप आज के दौर में महिला की मानसिक स्थिति पर वार्ता सुनेंगे। वार्ताकार होंगी श्रीमती श्वेता जैन। हमारी इस सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 12:40 पर और दोपहर 2:30 पर।

शाम 5:05 पर युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज आप असफलता से लें सीख विषय पर आज की बात सुनेंगे। साथ ही विश्व खाद्य कार्यक्रम, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और भारत छोड़ो आंदोलन पर भी लघु जानकारी दी जाएगी।

शाम 6:15 पर आप सुनेंगे बीकानेर में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की प्रभात फेरी की रेडियो रिपोर्ट। संयोजन होगा श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति श्री रेवत राम लेगा की, वाचक स्वर महेश उपाध्याय का। जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी शाम 6:40 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। शाम 6:05 पर श्रोता सुनेंगे एक ही कलाकार से विषय पर फिल्म संगीत। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इसमें आज आप ग्वार की उन्नत किस्में व बीज दर विषय पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही पशु टीकाकरण के लाभ, कुसुम योजना और खेतों में वर्षा जल संरक्षण पद्धतियां विषय पर जानकारी दी जाएगी। रात्रि 8:30 पर श्रोता सुनेंगे लोक संगीत। रात्रि 8:00 और 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 10:00 कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, कलाकार होंगी सात्विका मोहन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 होने वाले हैं। श्रोता सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा।

0: सभी सामयन के हिन मेहोगी मौसम जो नमस्कार एमा हेमा मलानी तमा सभी सामयन जी दिली आजियां थी कया साथियों अज आहे महीने जो बियो आर्तवार अज जो प्रोग्राम आहे जालुन जे लाए मुहिंजो घर मुहिंजो संसार प्रोग्राम जे तहत असा बुधनासी गाल बोल पूजा चांदवानी असा उनवान आहे त्योहारन जो महीनो थदे जी तैयारी कहड़ा बदलाव चर्चा कंदासी आलमी आदिवासी दिहाड़े ते ऐं मज़ो माणींदासीं गीत संगीत जो त अचो साथियों सभिनी खां पहिरीं ॿुधूं था ॻाल्हि ॿोल अॼु जेको असांजो ॻाल्हि ॿोल जो विषय आहे उहो बि त्योहारनि सां रिलेटेड आहे त अॼु जो जेको असांजो उनवान आहे त्योहारनि जो महीनो थधे जी तयारी कहिड़ा बदलाव
1: पूजा प्रोग्राम में तव्हांजो स्वागत आहे ऐं ॾाढनि ॾींहंनि खां पोइ असां मिलिया आहियूं ऐं ॾाढो सुठो विषय अॼु जी ॻाल्हि ॿोल जो आहे हेमा
0: जी
1: त सभिनी खां पहिरीं मां पूजा खां इहो ई पुछणु चाहींदसि की घणेई त्योहार असां मल्हाया आहिनि हेल ताईं कुंवारे हूंदे बि उन खां पोइ शादी खां पोइ बि त कुझु बदिलाव त उते ई नज़र अची वेंदा आहिनि की असां माइटनि में कुझु अलॻि नमूने सां त्योहार मल्हाईंदा आहियूं ऐं कुझु कुझु बदिलाव सावरनि में अचण खां पोइ महसूसु थींदा आहिनि पूजा सभिनी खां पहिरीं इहो ॿुधाईंदीअ की जेका वॾी सतह पई अचे तुंहिंजी शादी थी त पहिरीं कुझु

0: एक हुआ मायटन में नियम है ए शादी का पो कुछ अलग हुआ छा
1: भई पहिरीं त तव्हां ॿिन्हिनि जी तमामु घणी घणी महिरबानी की अॼु तव्हां मूंखे पंहिंजे हिन प्रोग्राम में शामिल कयो आहे मूंखे एतिरी त ख़ुशी थी आहे एक त त्योहारनि जी ख़ुशी त्योहारनि जो उत्साह उमंग जेको भरियलु आहे जेके त्योहार पाण मल्हाया आयासीं हींअर ऐं वरी जेके त्योहार हींअर अचणा आहिनि उन्हनि जी ख़ुशी खणी आयसि ऐं वरी तव्हां ॿिन्हिनि जो मिलन थी वियो अॼु मूंखे सम्झ में ई नथो अचे की मां पंहिंजी ॻाल्हि किथां शुरू कयां
0: मतिलबु अॼु मेल मिलाप थी वियो आहे त्योहारनि जो
1: हिते त ॾिसो जेकी ॻाल्हि तव्हां कई न सभ खां पहिरीं त मां इहो ई चवंदसि की त्योहार ई त आहिनि जेके पंहिंजे जीवन में मेल मिलाप खे वधाइनि था पंहिंजी जेकी बि मिट माइट आहिनि दोस्त यार आहिनि उन्हनि सां हिकु सुठी गॾिजाणी थी वेंदी आहे ऐं उन जे अलावा त्योहारनि में जेके लज़ीज़ जाइकेदार पकवान ठहंदा आहिनि उन्हनि जो त मज़ो ई अलॻि थींदो आहे ऐं हाणे ॻाल्हि थी कयां जेकी राजकुमारी तव्हां पुछी की तुंहिंजे पेकन में ऐं सावरनि में छा फ़र्क़ु आहे बिल्कुलु मुंहिंजे पेकन में बि ॿई थींदा हुआ तरबो बि हो ऐं पचाइबो बि हो का झल न हुई पर हा मुंहिंजे सावरनि में रुगो पचाईंदा आहिनि ऐं मूं मम्मीअ खे चयो की मम्मी मूंखे त भई छो त तव्हां रुगो पचायो था मूंखे त आदत आहे एतिरे वक़्त खां छो त मूं तरियल बि खाधो आहे त मुंहिंजी ससु चयईं तूं ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे पूजा का ॻाल्हि कान्हे इन में को वहम बि कान्हे इहे त हिकु तरह जा रीति रिवाज़ जेके हलनि पिया पर उन में पाण मटे भी सघूं था ऐं हाणे तूं आई आहीं शादी करे त हिकु नई शुरूआति था कयूं
0: अरे वाह यानी तुंहिंजी शादीअ खे ई उन्हनि नई शुरूआति मञी करे ऐं तरण जा पकवान जेके आहिनि उहे बि शुरू कया
1: उहे बि शुरू कया त मुंहिंजे घर में हाणे ॿई थींदा आहिनि असां तरंदा बि आहियूं ऐं पचाईंदा बि आहियूं
0: त पूजा इहो ॿुधाए न कि तव्हांजे घर में छा छा ठाहींदा आहिनि ऐं हिकु ॾींहुं पहिरीं खां ई छा तयारी कंदा
1: आहिनि भई हिकु ॾींहुं न मां ॿुधायां त मुंहिंजे घर में त जाम सभिनीनि खे वणंदो आहे इहो थधे जो एतिरो इंतज़ारु रहंदो आहे चाहे वॾा हुजनि चाहे ॿार हुजनि ऐं तव्हां चवंदा अॼुकल्ह नई टई आहे उहे त पसंदि नथा कनि पर न असांजे घर जा जेके ॿार आहिनि न उहे इन करे पसंदि था कनि छो त उन्हनि खे पंहिंजे दोस्तनि यारनि खे खाराइणो हूंदो आहे
0: अरे वाह इहा ॻाल्हि आहे कि भई घर में ठहे थो ऐं ॿारनि जा जेके साहेड़ियूं ऐं दोस्त अचनि था अगरि बचपन खां ई उन्हनि खे आदत लॻल आहे त ॿियो न त उन्हनि जे निस्बत ठहंदो आहे सुठो घणो ठहंदो आहे
1: छो त असां नंढा हूंदासीं जॾहिं असांखे पंहिंजा माइट ठाहे ॾींदा हुआ त असां खणी वेंदा हुआसीं स्कूल कॉलेज में जेके असांजा गैर सिंधी दोस्त यार हूंदा हुआ उहे खाईंदा हुआ त उन्हनि खे तमामु घणो वणंदो हो जीअं तव्हां ॻाल्हि कई जंहिं नंढे खां इहो खाधो आहे त उहे इंतज़ारु कंदा आहिनि की भई तव्हांजो उहो मिठो जेको थधो त्योहारु थींदो आहे मिठो लोलो ठहंदो आहे उहो कॾहिं ईंदो त उहे इंतज़ारु कंदा आहिनि इन करे मुंहिंजे घर में त जाम तयारियूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि ऐं सभ खां वधीक जेको अॼुकल्ह त मां ॾिसां थी तमामु घटि माण्हू ठाहिनि पिया मुंहिंजे घर सतपुड़ा अठनि ॾींहंनि खां पहिरीं ही ठाहिणु चालू थी वेंदा आहिनि
0: अरे वाह
1: छो त सतपुड़ो ठाहिण में थोरो टाइम वधीक लॻंदो आहे ऐं वरी उनखे प्रेम प्यार श्रद्धा सां तमामु सुठे नमूने ठाहिणो हूंदो आहे
0: तॾहिं उनजो मतिलबु धीरज जूं जेतिरियूं परतूं उन ते कबियूं आहिनि ओतिरो ई उहो वधीक फूलजंदो आहे ऐं सत पोड़ा ठहंदा
1: आहिनि उहे सत जेकी परतूं आहिनि न तूं सही ॻाल्हि कई राजकुमारी उन सत परतुनि में सत तरह जी भावनाऊं सत तरह जो प्यार हर हिकु जो अलॻि अलॻि प्यार उन में शामिल हूंदो आहे त सत ॾींहं पहिरीं न बल्कि थोरो हाणे त वधीक पहिरीं खां सतपुड़ा मां ठाहिणु शुरू करे छॾंदी आहियां पहिरीं पहिरीं सतपुड़ा ठाहे रखंदी आहियां उनखां पोइ गच जंहिंखे कुझु माण्हू चोथा बि चवंदा आहिनि ऐं उहे चोथा बि तरंदा आहियूं उहे ॾिसो मुंहिंजे माइटनि में छड़ो अटे जा ऐं सूजीअ जा ठहंदा हुआ पर हाणे जॾहिं मां शादी करे आयसि त हिते वरी बदिलाउ इहो ॾिठो की हिते मुंहिंजी ससु मैदे जा ठाहींदी आहे त उहा ई ॻाल्हि थी मुंहिंजी ससु चई तूं पंहिंजा बि ठाहे हितां जा बि ठाहे त असांजे घर में हाणे उहे ॿई ठहंदा आहिनि अधु मां अटे ऐं सूजीअ जा ठाहींदी आहियां ऐं अधु मैदे जा ठाहींदी आहियां खटो भत ऐं पूड़ियूं तरियल भींडियूं मसाले वारियूं उहे जाम वणंदियूं आहिनि असांजे घर वारनि खे ऐं पकोड़ा दही वड़ा ऐं उनजे अलावा चहरियूं कोकियूं बसर वारियूं उहे बि जाम वणंदियूं आहिनि सभिनीनि खे हा बेसण वारियूं ऐं उन में ख़ासि करे असांजे ॿारनि खे बि यादि रहंदो आहे
0: की हा ॾाढनि खे थोरो सो सुकाए करे ऐं उन्हनि खे सुठी तरह सां कुटे करे सॼा धाणा थींदा आहिनि उहे बि विझबा आहिनि
1: ऐं हिकु मतिलबु सुठी भावना सां बि इहे शयूं कयूं बि पिया खाऊं बि पिया ऐं उनजो लुत्फ़ बि माणूं पिया
0: त पूजा जी तव्हां ॿुधायो की तव्हांजे घर में ऐं माइटनि में थधे जी कीअं तयारी थींदी आहे त थधे जी जीअं तयारी थी वई जीअं त्योहार ॾींहुं असां सबरी करे सभिनी खां पहिरीं पूजा करणु वेंदा आहियूं त हीअ पूजा कीअं थींदी आहे वॾी सतह जी तव्हां ॿुधाईंदा

0: हा हा बिल्कुलु। राति जो जेको बि पाण सभु थधो ठाहे रखंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ चुल्ह खे थधो कबो आहे। हाणे अॼुकल्ह त चुल्ह न रहिया, गैस ते ई पाण पचाईंदा आहियूं, त जंहिं बि गैस ते पचाईंदा आहियूं उन गैस ते पाणीअ जा छंडा विझी उनखे थधो करे छॾंदा आहियूं ऐं उन ते को अहिड़ो बासण या तओ उल्टो करे रखंदा आहियूं की जीअं बि को ग़लतीअ सां बि उनखे ॿारे ॾियनि। पिठा लोला ठाहींदा आहियूं, गोईंदा आहियूं अटो, त जेकी उहा परात हूंदी आहे न, पोइ उन में उहो पाणी विझी थोरो सो ऐं उनखे घुमाए करे उन सां ई छंडा ॾेई ऐं थधो कंदा आहियूं ऐं उहो थधो थी वियो। ऐं राति जो असां थोरा सा छोला या चणनि जी दाल पुसाए रखंदा आहियूं ऐं सुबुह जो पोइ सनान जेॾी महिल कंदा आहियूं त उहो थधो जेको इहो चणा ऐं पुसाया आहिनि उहो पाणी चणा
1: चइबा आहिनि,
0: हा बिल्कुलु, उहो खणी उहो पंहिंजे मथे ते विझी करे उन सां सनान करे पंहिंजो पाण खे बि थधो कंदा आहियूं। छाकाणि मुंहिंजी ससु चवंदी हुई, असांजा वॾा बि चवंदा हुआ की छो त असां पचायोसीं त असां त गर्म ई आहियूं, असां में उहा गर्माश आहे त असां पंहिंजो पाण खे बि थधो कंदासीं, तॾहिं असां शीतला माता खे थधो करे सघंदासीं।
2: अच्छा पूजा, इन सां इहा प्रेरणा त मिले थी की जेके बि पाण इहे रीति रिवाज पूरा कयूं था, पर करण वारा त असां ई आहियूं, त असां जेसि ताईं दिलि सां मन सां भावना सां
0: बिल्कुलु बिल्कुलु। त इहा इन तरीक़े सां सनानु पाणी करे ऐं पोइ असां जेके बि असां पकवान ठाहिया आहिनि सभु उहे हिकु थाल में विझी करे थोरो थोरो पूजा लाइ ऐं न्याणी जो अलॻि कढी करे, हाणे ॾिसो पहिरीं त चवंदा हुआ की दरिया ते वेंदा हुआ, तलाउ ते वेंदा हुआ, उहे ॻाल्हियूं त रहियूं न, ऐं मंदर में वञी करे सभु ॼणा गॾु थी करे उते ई पूजा कंदा आहिनि ऐं कंहिंखे वक़्तु न हूंदो आहे त उहो पंहिंजे घर में जिथे बि जल जो स्रोत आहे, पाणी जो नल आहे, उते ई पूजा कंदो आहे, त उहे सभु पकवान खणे उन्हनि ते असां मखण, उहो मखण बि घर जो कढंदा आहियूं ऐं उहो मखण ऐं सिंदूर जो तिल्क लॻाए करे सभिनीनि खे ईअं सजाए रखंदा आहियूं, जा ॾिसण में उहो थाल एॾो सुठो लॻंदो आहे ऐं हिकु आत्मिक ऊर्जा उन सां मिलंदी आहे। पूजा जे वक़्त असां छा कंदा आहियूं, जीअं थाल सॼी वियो सुठो सुहिणो बिल्कुलु लॻंदो आहे ऐं ख़बर अथव इन में त ॿारनि खे एॾो मज़ो ईंदो आहे, चवंदा आहिनि ममी मूंखे ॾे मखण मां थी आणा ऐं सिंदूर मां थो आणा, त ॿार बि इन में बिल्कुलु शामिल थींदा आहिनि। पोइ उहे जेको असां नंढो लोलो हिकु नंढो ठाहियोसीं उन ते जेकी सत अखणियूं रखियूंसीं उहे खणंदा आहियूं हथ में ऐं थोरो सो जेको पाण चांवर चणनि जी दाल जेके राति जो पुसायासीं उहे बि हथ में खणी पाणी में थोरो कचो खीर बि विझंदा आहियूं ऐं सिंदूर बि विझी करे उहे हथ में खणी ऐं हिकु हथ खां ॿिए हथ में रखंदा आहियूं ऐं गॾु गॾु एॾो सुठो हिकिड़ो पंहिंजो गीत आहे उहो बि ॻाईंदा आहियूं, उहो त शायदि तव्हां बि सभई ॻाईंदा हूंदो, अचो त पाण गॾिजी करे ॿुधायूं पंहिंजे ॿुधंदड़नि खे बि उहो कहिड़ो गीत ॻाईंदा आहियूं। सावण माई सत आई भरियूं झोलियूं ॾे, जहिड़ी सची शीतला तहिड़ो मूं करे, सतीअ संदा सत पुट सत मूं सुहाइनि था,
1: नीलीअ घोड़ीअ जो चढ़े सो सतीअ जो कांद, पुट खटी कर आया वरियो मुंहिंजो भाग, वर खटी कर आया वरियो मुंहिंजो भाग, केरूअ रता कपड़ा आलाड़ी बोड़ी नितियूं, खीर पुट लक्ष्मी रोज़ी ॾींदो राम, सची शीतला माता तू घर ठरी मां जड़ ठरी, तू हेठि ठरी मां पेट ठरी।
2: ऐं पूजा हेमा भई इहो जेको भॼन चइजे, इहो पूजा जो जेको भॼन आहे की हीअ शीतला माता जी जेका असां वॾी सत मल्हाईंदा आहियूं, इन में मक़सदु इहो ई हूंदो आहे की असांजे घर जा ॿार पुट धीअरूं ऐं जेके असांजा घोट सावरा सभु खुशहाल रहनि।
0: ऐं बिल्कुलु इहो इन करे बि हूंदो हो त पहिरीं जेके बि अंधविश्वास हूंदा न, माण्हू सम्झंदा हुआ की भई इनखे कोई देवीअ प्रकोप थी वियो आहे, इनखे कुझु निकितो आहे, माता जी निकिता है, त उनखे थधो करण लाइ इहो शीतला माता जो ख़ासि मक़सदु इहो ई हूंदो आहे की शीतला माता खे पाण थधो कंदा आहियूं ऐं इन करे हिकु ॾींहुं पहिरीं थधो ठाहे ॿिए ॾींहुं उनखे थधे जी पूजा करे थधो खाईंदा आहियूं
2: ऐं इन बहाने असां ख़ुदि जा मन थधा कंदा आहियूं। अच्छा पूजा, तव्हां इहा ॻाल्हि ॿुधाई की हिन तरीक़े सां असां पूजा कंदा आहियूं, ताम ठाहींदा आहियूं, त पहिरीं खां जेको हलियो पियो अचे रिवाज़ नियम उहे सभु हाणे पूरा थियनि पिया या वक़्त जे बदिलावनि सां गॾु गॾु असां उन में कुझु बदिलाउ कयो आहे? छो जो पहिरीं जेके संयुक्त परिवार हूंदा हुआ, जॉइंट फैमिलीज़ हूंदियूं हुयूं, ॿार सभु घर ई हूंदा हुआ, सभु कुझु मतिलबु अंदरि ई हूंदो हो, केरु ॿाहिरि कमाइण कान वियो आहे, धीअरूं पुट नुंहरूं सभु आसे पासे में आहिनि, त हाणे वक़्तु ॾाढो बदिलजी वियो आहे, हाणे तूं छा महसूसु करे रही आहीं? ऐं न केवल बदिलाउ इहे आया आहिनि बल्कि शारीरिक रूप सां बि असां तंदुरुस्तीअ तरफ़।

0: जीवनशैली में पूरी तरह से बदलाव अची चुकियो है
1: तो उने में छा बदलाव आया
2: है तमाम घणा बदलाव आया है असा दिसो तो दिसो परिवर्तन त चंदा न दुनिया जो नियम आहे बदलाव असा के हर हन दिसण में इदो ई न त रुगो त्योहार असा के दिसण में प्याचन की बदल जी वे हन असन जी जीवनचर्या में बदलाव आयो है असन जी नौकरी करण जी तरीकन में बदलाव आयो है पंजो पान के तंदुरुस्त रखण में बदलाव आयो है त हर शय में बदलाव आयो है पर हां कुछ बदलाव जेके पान इनन त्योहारन में दिसू था खास कर जेकी असन जी जेकी नई टैया है उहा असा खा अज परे थी रहे छो त उनन के पंजे कम धंधे जे करे बाहर रहणो थो पए उए असा जे त्योहारन में जुड़ी नथा सगन त उनन में बदलाव आयो आहे जेकी शयूं असा ठाइंदा हासी सब गड़जी करे उनन के टाइम काने उए परे आहिन घणा त एतरो परे आहिन कि उते ई शयूं मिलंदियूं भी नाहिन त उठाए भी न सगंदा आहिन त बदलाव त जाम आया आहिन पर मां समझा थी कि वरी भी जेके अज जा असन जा बार आहिन उहे इनन त्योहारन के याद करे या अगर उनन वठ मोकल हुंदी आहे त उहे इन में शामिल जरूर थींदा आहिन
0: जी बिल्कुल
2: या भी गाल काने कि उहे बई टाइम बई थदो खाइन एंड सो बदलाव एक बियो भी आयो आहे त भले अज असन वठ वक्त काने असन सब शयूं त ठाए न था सगु अज त आधुनिकता जे दौर में असा दिसू ता सब कुछ बाजारों में मिले पियो तो ठायल
0: कई रेडीमेड शयूं भी भई मिलंदियो
2: हां जी नानकतायूं थियो आजकल चौथा भी मिलन था हाँ, सतपुड़ा हां उए भी मिलन था त उए बाहरा घुराए करे भी असा ठीक आ असा के टाइम काने त नथा ठाए सकू पर उनन शयन जो सुगंध त पान उन रूप में कयो ही था ना
0: ता घर में एतरो अधिक फैलाव न कयो बाहरा मिलन थियो पर त्योहारन के मलायो जरूर
2: असा जे समाज में त हाने घणी एतरो संस्थाऊ पंचायतू थी वई वैन कि ये के त्योहार आहिन खास करे थदड़ी जो त्योहार त सजे शहर वारा गड़जी करे एक हंधि एक ढी रखी छड़ंदा आहिन उन में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कंदा आहिन नंढन बारन के भी जोड़ींदा आहिन उते बाकायदा पूरी पूजा विधि सां थदड़ी जो सजो प्रोग्राम थींदो आहे जेके भी पकवान आहिन उहे लंच में उन्हनि खे उहे खाराइबा आहिन
0: मतलब सामूहिक रूप सां
2: मल्हाईंदा
0: पूजा जी तव्हां असांजी भेनरुनि खे छा संदेश ॾियणु चाहींदा
2: भई मां त इहो ई चवंदसि की ॾिसो आधुनिकता सां गॾु जेके त्योहारनि में बदलाव आयो आहे इहो त असांखे नज़र अचे ई पियो पर तॾहिं बि मां इहो सम्झां थी की जेके बि असांजा रीति रिवाज़ आहिनि उन्हनि में अॼु बि असांजी जेकी भावनाऊं आहिनि था आहे असांजी जेकी श्रद्धा आहे उहा बरक़रार आहे ऐं असांजा ॿार बि उहे न मिलनि पर ॾिण वार पूजा पाठ जॾहिं बि थींदा आहिनि सभु गॾिजी वेहंदा आहिनि ऐं उन्हनि त्योहारनि में शामिलु थींदा आहिनि हा भले उन्हनि खे उहो ॻाइण कहाणी ॿुधण न अचे ऐं इहा हिकु ॿी ॻाल्हि आहे की असांजा जेके बि तीज त्योहार थींदा आहिनि ॾिण वार थींदा आहिनि उहे कंहिं न कंहिं लोक कथाउनि सां बि जुड़ियल आहिनि त जॾहिं उहे कथा असां ॿुधाईंदा आहियूं त ॿारनि खे बि ॿुधण में मज़ो ईंदो आहे ऐं वरी सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे हाणे त सोशल मीडिया ते बि एतिरो प्रचार प्रसार थी वेंदो आहे पंहिंजे ॾिण वारनि जो त ॿार जॾहिं उन में ॾिसंदा आहिनि न त उन्हनि खे बि लॻंदो आहे की हा इहो त असां बि ठाहे था सघूं असां छो न ठाहियूं त मां त इहो ई चवंदसि की भई असां पंहिंजे ॿारनि खे इहे संस्कार ज़रूरु ॾियूं त उहे जेको बि थोरो घणो सिखनि जेको बि थोरो घणो ठाहे सघनि उहे ज़रूरु ठाहिनि छो त अॼु असां पंहिंजे पेकनि में जेकी शइ ठाहींदासीं उहे पंहिंजे साउरनि में हली करे उन्हनि खे अॻियां वधाईंदासीं भले तव्हां हिकिड़ो ई लोलो ठाहियो न वधीक छो पर हा पतो हुजे की इहो ईअं ठाहिबो
0: आहे संस्कृति सां जुड़िया रहनि बिल्कुल बिल्कुल पूजा तो पैंजो हितरो कीमती वक्त कढ़ी करे असा सा गाल बोल कही ए स्टूडियो में आई है डाडो डाडो धन्यवाद शुक्रिया
2: भी धन्यवाद तो तहां बिनिन जो भी
0: त हेमा डाडी सुठी गाल बोल रही कई शयूं त मुखे खुद नई जान मिली कि इन के इए छो कबो आ किया कबो आ वापस आ रिकॉल कयो मु हेमा हिन ॻाल्हि ॿोल खां पोइ मूंखे कुझु फिल्मूं यादि अची रहियूं आहिनि को चहिरो यादि अची रहियो आहे जेको चिमकंदड़ चहिरो ऐं खिलंदड़ चहिरो हा मां सम्झी वई दीदी तव्हांजो इशारो सुभाणे जनमदिन आहे अजीत पाछानी जो दीदी तव्हां अजीत पाछानी जो जनमॾींहं जे बारे में ॻाल्हायो त हू न त को वॾो हीरो हो ऐं न ही कोई नामी ग्रामी डायरेक्टर हो पर हिंदी फिल्म तोड़े टेलीविजन जे पर्दे ते उन पंहिंजनि निभायल नंढनि रोलनि में बि पंहिंजी अदाकारीअ जे फन जो अहिड़ो असराइतो मुज़हिरो कयो जो बॉलीवुड सिंधी अखर बि आब वधीक रोशन थी वई मिस्टर इंडिया अजीत वाछानी जी हिकु कामयाब फिल्म हुई त मैंने प्यार किया ऐं हम साथ साथ हैं संदसि यादगार हिंदी फिल्मूं आहिनि हुननि 50 खां वधीक फिल्मुनि में जुदा जुदा किरदार निभाया

0: सन 2000 में रिलीज थियल सिंधी फिल्म दिल दिजे दिलवारन के ए 2001 में सिंधी फिल्म पाड़ेवारी में भी हुनन कम कयो अजीत वाछानी घणे टीवी सीरियल्स में भी कम कयो जे में खास हुआ बनते बिगड़ते हसरतें दाने अनार के एक महल हो सपनों का ए दीदी तवा के पतो है एक महल हो सपनों का हन हजार एपिसोड पूरा कया
1: अरे वाह
0: हुनन जी अदाकारी हेडी असरायती हुई जो अज भी मानुन जे ज़हन में हु याद आइन
1: भले उहे न हुजन पर पंहिंजी एक्टिंग जे ज़रिए हुनन जेका माण्हुनि जे दिलुनि में छाप विधी आहे उहा छाप त हमेशह रहंदी रहंदी
0: बिल्कुलु दीदी साथियो आलमी आदिवासी ॾिहाड़ो हर साल 9 अगस्त जो मल्हायो वेंदो आहे ही ॾिहाड़ो दुनिया भर जे आदिवासी समुदाय जे अधिकारनि जी रखिया ऐं हुननि जी संस्कृति खे सम्मान ॾियण लाइ मल्हायो वेंदो आहे साल 1982 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र जी आदिवासी आबादी ते कार्य समूह जी पहिरीं बैठक थी हुई जंहिंजी यादि में ही ॾींहुं चूंडियो वियो साथियो सावण अचण वारो आहे ऐं बारिश जो मौसम पियो हले सावण जी मुंद जो अलॻि ही नज़ारो थींदो आहे हर हंधि सावक ॾिसी दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे सावण हुजे ऐं साॼण गॾु न हुजे त हीउ गीत त यादि ईंदो आहे त अचो ॿुधूं था भगवंती नावाणी जी सुरीली आवाज़ में ही सावण जो गीत

गीत बुधी तो मजो ही अची वो अज के प्रोग्राम में असा सजे सावण के मलायो सी सावण जा त्योहार मलाया सी गीत बुधिया सी तमाम मजो आयो आए हाने घड़ी इशारो करे पई प्रोग्राम जो वक्त पूरो थण जो वरी गजानी थिंदी सिंधी प्रोग्राम में तेसी ताई हेमा मलानी के दींदा मोकल नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:40 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए ताजमहल फिल्म का गीत। युगल स्वर है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का। साहिर लुधियानवी के लिए इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: लीजिए अब सुनिए उपकार फिल्म का गीत। स्वर है महेंद्र कपूर और साथियों के, गीत के बोल गुलशन बावरा के हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए पुकार फिल्म का गीत।

0: स्वर है आरडी बर्मन और अमिताभ बच्चन का।
1: देखो हाँ माइके नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस बेबी

आज 9 अगस्त है, पूरा देश अगस्त क्रांति दिवस मना रहा है। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और पूरे देश को आंदोलनरत करके प्रत्येक नागरिक को अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारे के साथ समाहित कर लिया था। आइए हम नमन करते हैं उन अनाम गुमनाम शहीदों को जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने आप को शहीद कर दिया। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 1 बजने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये इस वर्ष अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने अल्बर्ट हॉल से राज्यस्तरीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि यह अभियान आज जनव्यापी अभियान का रूप ले चुका है।
1: 2022 में जब भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर फहराने वाला ही ध्वज नहीं है, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी उपक्रमों में ही फहराया जाए यह ठीक नहीं है, यह घर घर में फहराया जाना चाहिए और हर लोगों के दिलों में बसना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आमजन से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की।
2: आप सबने देखा है, तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में

0: पुकारें हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जनभागीदारी का परिचय दें, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है।
1: ये रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर रामनिवास बाग, निकास गेट से सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, आर्मी के जवान, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित करीब 10,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। जालौर में तिरंगा रैली के साथ जन जागृति अभियान शुरू हो गया है। झुंझुनू, पाली और अलवर में प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान भी किया गया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तिरंगा यात्रा के साथ ही देश की रक्षा और आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा रखी गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बरसात का ये दौर 13 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का दौर बना हुआ है। सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर पानी खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास में बरसा। अलवर, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, सवाईमाधोपुर और सीकर जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के 4 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण मिला है। जिले के अनूप शहर, कलाना, भूमपुरा और मक्कासर के पीएचसी प्रमाणित होने के बाद क्वालिटी सर्टिफाइड चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत, प्रस्तुत करता है ज्योति वर्मा और सुरभि बोहरा।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को रेडियो सखी सुरभि बोहरा
1: और ज्योति वर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। काले काले मेघों ने अंबर पर डेरा डाला है, मिट्टी की सौंधी खुशबू ने हर दिल को बहलाया है। सावन की रिमझिम फुहारों का मौसम आ गया, संग अपनी खुशियों और उमंग की बौछार लाया है।
1: वाह सुरभि, कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ तुमने बोली हैं। सही मायने में देखा जाए तो सावन एक मौसम नहीं बल्कि ये तो एक एहसास है जो बरसों से हमारे दिल को भिगोता आया है।
0: बिल्कुल सही कहा ज्योति, तुमने जब भी तपती गर्मी के बाद आसमान में वो काली घटाएं घिरकर आती है तो पहली बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती है, ऐसा लगता है मानो कुदरत ने एक नई

0: सांस ले ली हो।
1: और सच कहूं तो इस मौसम में बरसात के साथ चाय की चुस्की लेते हुए बाहर बरसते हुए रिमझिम फुहारों को देखने का कुछ मजा ही अलग होता है ना।
0: बिल्कुल।
1: और वैसे आज का दिन कुछ विशेषताएं लिए हुए भी है, क्यों आज आदिवासी दिवस भी है, जिसकी हम अपने सुनने वाली बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ आज हर घर तिरंगा यात्रा की भी शुरुआत हुई है, तो चारों ओर सावन की हरियाली और तिरंगे ध्वज देखकर मन मयूर नाच उठता है ना।
0: बिल्कुल। सावन का नाता सीधा हमारे दिल से है, हमारी संस्कृति और हमारे गीतों से है। फिर चाहे वो बागों में झूले डले हो, कजरी का सुर हो, मल्हार का सुर हो, या दोस्तों के साथ बारिश में भीगने की वो प्यारी सी जिद हो।
1: तो बस श्रोताओं बहनों, आज का ये कार्यक्रम इसी सावन की रिमझिम फुहारों के नाम हम करते हैं, और आज हम इस मौसम का मजा लेंगे इन भीगे भीगे गीतों के साथ। तो सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
8: वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहनों, आज का दिन हमारी आज़ादी के इतिहास में एक बेहद खास और गर्व से परिपूरित करने वाला दिन है। आज हम याद कर रहे हैं देश के उन महान सपूतों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है।
7: जी ज्योति, आज काकोरी कांड दिवस है, जिसे अब हम सब सम्मान के साथ काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस के नाम से जानते हैं।
8: हाँ सुरभि, और ये दिवस 9 अगस्त 1925 का वो दिन आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा जगा देता है। लखनऊ के पास काकोरी नाम की छोटी सी जगह पर हमारे क्रांतिकारियों ने जो साहस दिखाया था, उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी।
7: हाँ ज्योति, इस साहसिक कदम को आज अंजाम देने के लिए और कोई नहीं बल्कि हमारे अपने वीर नायक थे, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी।
8: और
7: ज्योति, जब भी हम जैसे आज की बात करते, तो आज के हमारे जो युवा हैं वो अपना पूरा समय जो है वो मोबाइल में, सैर सपाटे में, इसमें गंवा देते हैं, लेकिन उस समय के जो

0: क्रांतिकारी थे, तो उनके मन में, उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा था।
1: वो देशभक्ति ही इस घटना में पूरी तरह दिखाई दे रही है ना, क्योंकि पूरी घटना की खास बात ये है कि उनका कोई निजी फायदा या निजी मकसद नहीं था, वो तो अंग्रेजों को उनके खजाने को ले जाने से रोकना चाहते थे, जो कि हमारे देश से ही लूटा गया था, ताकि आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा सकें।
0: बिल्कुल सही कहा ज्योति, इन वीरों का त्याग और उनकी अटूट एकता हमें ये सिखाती है कि देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता।
1: बिल्कुल, और आज के दिन हम सब मिलकर अपने उन अमर शहीदों की शहादत को नमन करते हैं और उनके सपनों के भारत को बेहतर बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं।
0: इस देशभक्ति के सुंदर भाव के साथ बहनों अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का अगला सुरीला पड़ाव।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: बहनों, अब हम सुनेंगे वार्ता, आज के दौर में महिला की मानसिक स्थिति। वार्ताकार श्वेता जैन।
5: श्रोताओं, महिलाएं सदियों से ही परिवार की धुरी रही है। वो माँ है, बेटी है, पत्नी है, बहन है और अब एक प्रोफेशनल महिला भी है। इतनी सारी भूमिकाओं के बीच एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है, महिला खुद कैसा महसूस कर रही है, आज की हकीकत क्या है। आज की महिला शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, हर क्षेत्र में आगे है और बराबर की भागीदारी निभा रही है। आज की भागम भाग भरी जीवन शैली में महिलाओं की मानसिक स्थिति कई कारणों से प्रभावित हो रही है। हर महिला का अनुभव अलग होता है, लेकिन कुछ सामान्य चुनौतियाँ सभी की समान हैं। काम और परिवार का दोहरा दायित्व, नौकरी, घर, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना, मानसिक दबाव वास्तव में महिला को सभ्य बना रहा है। आज के दौर में नारी 21वीं सदी की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है और ना ही वह केवल एक दफ्तर की कर्मचारी है, वह एक सुपर वूमेन बनने के दबाव और अपने व्यक्तित्व पहचान के बीच जूझ रही है। चाहे वह कामकाजी महिला या गृहिणी हो, आज वह दोनों के बीच में जूझ रही है। इस दौर में नारी की मानसिक स्थिति जटिलताओं, दोहरे संघर्षों और अदम्य साहस का एक अनूठा मिश्रण है। वह माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मित्र, शिक्षिका, डॉक्टर, सैनिक, वैज्ञानिक, उद्यमी और नेता जैसे अनेक रूपों में समाज को दिशा देती है। समय के साथ महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार, राजनीति, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर भी उनके मन की दुनिया आज भी अनेक प्रकार के दबावों, अपेक्षाओं, संघर्षों और सपनों से भरी हुई है। आज की महिला आत्मनिर्भर बन रही है, अपने निर्णय स्वयं ले रही है और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रही है। लेकिन इसके साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी पहले से अधिक बना है। आज की महिला पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, जागरूक और आत्मविश्वासी है। वह अपने अधिकारों को पहचानती है और अपने सब

को पूरा करने का साहस रखती है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति केवल उपलब्धियों से नहीं बनती, बल्कि उन परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है जिनमें वह जीवन जीती है। कई बार महिलाओं के मन में यह संघर्ष चलता रहता है कि वह अपने करियर में भी सफल रहे और परिवार की अपेक्षाओं पर भी खरी उतरे। यह दोहरी जिम्मेदारी कई बार मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्क लाइफ बैलेंस यानी कार्य और जीवन में संतुलन करने की है। वे दफ्तर में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, लेकिन घर लौटते ही उसे पारंपरिक बहू, माँ और पत्नी की भूमिकाओं को पूरी परफेक्शन के साथ निभाने की उम्मीद की जाती है। इस दोहरी पारी के कारण अक्सर क्रॉनिक गिल्ट, जिसे हम अवांछनीय अपराध बोध कह सकते हैं, उससे घिरी रहती है। वे ना तो बच्चों को पूरा समय दे पा रही है, ना ही अपना कार्य के साथ पूरा न्याय कर पा रही है। गृहिणियों की मानसिकता भी पहचान के संकट से गुजरती है। दिन भर बिना छुट्टी के 2400 घंटे काम करने के बाद उनके श्रम को काम नहीं माना जाता। समाज की यह सोच है कि वह तो बस घर पर रहती है, उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाती है, जिससे उनमें अकेलेपन और अवसाद की भावना पनपने लगती है। हमारा समाज आज भी एक अजीबोगरीब विरोधाभास में जी रहा है। एक तरफ समाज चाहता है कि लड़कियां पढ़े लिखे, कमाए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, लेकिन दूसरी तरफ समाज यह स्वीकार करने को भी तैयार नहीं कि कमाने वाली घरेलू स्त्री जिम्मेदारियों में थोड़ी सी भी ढील ले सकती है। समाज आज भी नारी का मूल्यांकन इस बात से करता है कि वह कितनी अच्छी गोल रोटियां बनाती है या वह कितनी आज्ञाकारी है। यह सामाजिक दबाव महिलाओं के मानसिक तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। दफ्तरों में महिलाओं को आज खुद को साबित करने के लिए पुरुषों से दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। कॉरपोरेट जगत में ग्लास सीलिंग आज भी मौजूद है। इसके अलावा कार्यस्थल पर मातृत्व अवकाश के बाद करियर में पीछे छूट जाने का डर, पुरुषों के वर्चस्व वाले माहौल में अपनी आवाज बुलंद रखने की चुनौती और मानसिक या लैंगिक उत्पीड़न का सामना करना उसकी मानसिक शांति को लगातार भंग करता है। आज अधिकांश महिलाएं नौकरी भी करती हैं और घर की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। कार्यालय में कार्य पूरा करना व घर लौटकर बच्चों, बुजुर्गों तथा परिवार की देखभाल करना आसान नहीं होता। लगातार चलने वाली दिनचर्या मानसिक थकान उत्पन्न कर सकती है। समाज अक्सर महिलाओं से यह अपेक्षा करता है कि वह हर भूमिका में पूर्ण हो, आदर्श बेटी, आदर्श पत्नी, आदर्श माँ और सफल पेशेवर, हर समय सर्वश्रेष्ठ बनने का यह दबाव मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हालांकि अनेक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, फिर भी कई परिवारों में आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। कहीं वेतन असमानता, कहीं रोजगार की अस्थिरता और कहीं आर्थिक निर्भरता भी चिंता का कारण बनती है। डिजिटल जीवन का प्रभाव। सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया, लेकिन साथ ही तुलना, अवास्तविक सौंदर्य मानकों और नकारात्मक टिप्पणियों का भी दबाव बढ़ाया है। लगातार दूसरों के जीवन से तुलना करने से आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। महिलाओं की मानसिक स्थिति इन सभी चुनौतियों के बावजूद महिला की सबसे बड़ी विशेषता उसके अद्भुत मानसिक दृढ़ता है। वे कठिन परिस्थितियों के बाद परिवार को संभालती है, संकट में समाधान खोजती है और जीवन में आगे बढ़ने का साहस बनाए रखती है। इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि जब महिलाओं को अवसर और सम्मान मिलता है तो वे समाज को नई दिशा देती हैं। उनकी सहनशीलता, संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। परिवार की भूमिका महिला की मानसिक शांति का सबसे बड़ा आधार उसका परिवार होता है। यदि परिवार सहयोगी हो, उसके विचारों का सम्मान करे और जिम्मेदारियों को साझा करे तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। एक ऐसा घर जहां संवाद हो, सम्मान हो और निर्णयों में समान भागीदारी हो, वहां महिलाएं अधिक संतुलित और प्रसन्न जीवन जी सकती हैं। समाज को यह समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को सम्मानजनक वातावरण मिले, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों, कार्यस्थलों पर सुरक्षित व सहयोगी माहौल हो, मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत की जाए, महिलाओं की उपलब्धियों के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी महत्व दिया जाए। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का महत्व जब महिला स्वयं पर विश्वास करती है, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझती है और अपने निर्णयों का सम्मान करती है, उसका मानसिक संतुलन अधिक मजबूत होता है। आत्मसम्मान केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं वरन स्वयं को स्वीकार करने से आता है। अपनी सफलता और असफलता दोनों को सीख के रूप में स्वीकार करना

0: मानसिक परिपक्वता का संकेत है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ सरल व प्रभावी कदम अपनाए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत वह प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकाले, प्रतिदिन व्यायाम करे, योग करे, जिम जाए, ध्यान करे, पर्याप्त नींद व संतुलित भोजन ले, परिवार और मित्रों से खुलकर संवाद करे, अपनी रुचि यथा संगीत, लेखन, चित्रकला, पठन, बागवानी के लिए समय दे, आवश्यकता होने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच ना करे। उसकी सोच केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, वह समाज में समानता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज के दौर में बहुत से सुलगते सवाल हैं। एक समाज के तौर पर हमें खुद को गंभीर रूप से सवाल पूछने होंगे कि क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाने मात्र से नारी सच में आज़ाद हो गई, या उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ दुगना हो गया है। हम हाउसवाइफ के काम को एक सम्मानजनक और मूल्यवान प्रोफेशन के रूप में कब स्वीकार करेंगे? घर के कामों और बच्चों की परवरिश को सिर्फ महिला की जिम्मेदारी समझना समाज कब बंद करेगा? क्या हम एक ऐसा सुरक्षित माहौल दे पाएं जिसमें एक महिला बिना डर के संध्या या रात्रि के समय मानसिक रूप से शांत होकर घूम सके? आज के दौर में नारी की मानसिक स्थिति एक चौराहे पर खड़ी है। वह कमजोर तो नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी मानसिक सेहत को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है कि समाज, परिवार, पुरुष मानसिकता को बदले। जब तक घर के कामों में पुरुषों की साझेदारी और कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित व समान माहौल नहीं मिलेगा, तब तक नारी का मानसिक संघर्ष नहीं थमेगा। नारी को देवी या सुपरवुमन बनाकर पूजने के बजाय उसे एक मनुष्य के रूप में समझना और सम्मान देना आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। यदि महिलाएं मानसिक रूप से स्वस्थ, आत्मविश्वासी और सम्मानित होंगी तो परिवार मजबूत होगा, समाज समृद्ध होगा और राष्ट्र प्रगति करेगा। आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम महिलाओं को केवल उनकी जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि अपने सपनों, संघर्षों और भावनाओं से भी पहचानें, उन्हें सुने, उन्हें समझें और उन्हें समान अवसर प्रदान करें। जब एक महिला मुस्कुराती है तो केवल उसका चेहरा नहीं, बल्कि पूरा परिवार और समाज उजाला महसूस करता है। इसलिए महिला के मन का सम्मान करना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह एक संवेदनशील, समतामूलक और सशक्त समाज की पहचान है। महिला के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी कदम अपनाए जा सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि यदि घर की दीवारें ईंटों से बनती हैं तो घर का भविष्य स्त्री के मन से बनता है। इसीलिए स्त्री के मन को सुरक्षित रखना पूरे समाज का सबसे बड़ा दायित्व है।
1: तो बहनों, सुनी आपने ये वार्ता महिलाओं की मानसिक स्थिति विषय पर श्वेता जैन से। ये वार्ता उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है कि गैर नहीं, अब खुद का ख्याल रखना सीखो, अपनी खुशी, अपनी शांति की राह भी देखो। तुम सिर्फ दूसरों का सहारा नहीं, अपनी मानसिक सेहत का भी किनारा हो। तो आप भी अपनी चिंताएं छोड़िए और आ जाइए सावन की के मौसम में, जो हमारी सखियां झूले झूल रही हैं, आइए हमारे साथ झूलिए झूले।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: सुरभि, आजकल क्या है कि एक समस्या जो है वो सबके सामने आ रही है, इससे हम सभी रोज ही इस समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं छोटी छोटी बातों से हम परेशान नहीं हों, है ना?
1: बिल्कुल ज्योति, ये तो लगता है कि सीधे मेरे घर की ही कहानी है ज्योति। सच में बताऊं, जब मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो घड़ी का सुइयां तो चल ही रहा था, तो साथ साथ में जैसे है ना, मेरी मेरे लिए चाय थी, चाय गर्म करके मैं लाई और मैं किसी और काम में लग गई, तो उसी वक्त चाय ठंडी हो गई और मेरा मूड ऑफ हो गया। दूध उबल जाता है तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, और काम वाली बाई जब छुट्टी ले लेती है तो सारा काम जो है वो अपने सिर पर पड़ जाता है, और ऐसा लगता है कि हमारा मन खराब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया, है ना?
0: बिल्कुल सही कह रही हो, ये सब तुम्हारी और मेरी बात नहीं है केवल, ये हर महिला की समस्या है। और वो क्या करती हैं, अपने आप को सब तरफ से परफेक्ट दिखाने के चक्कर में इतनी तनावग्रस्त हो जाती हैं कि छोटी छोटी बातें जो है ना पहाड़ सी लगने लगती हैं, और फिर उनकी, हमारी बहनों की ये आदत भी तो है ना कि परेशानी की इतनी आदत है मुझे कि किसी दिन कोई परेशानी ना हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ।
1: सही बात है ज्योति, पर सवाल ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां सामने आए, जैसे भाई ने छुट्टी ले ली, ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई, तो खुद को संभाले कैसे, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो हमारे नाक पे रहता है और कभी कभी अचानक आ जाता है।
0: सही कह रही हो, और मैंने इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम बनाया है।
1: क्या?
0: मैंने नियम बनाया है 5 days rules, और ये 5 days rules में रखा है कि जब भी किसी बात पे गुस्सा आए या तनाव हो तो अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि क्या 5 दिन बाद ये बात मेरे लिए मायने रखेगी।
1: बिल्कुल। अरे वाह, अगर चाय खराब बनी है तो 5 दिन बाद तो क्या 5 घंटे बाद भी याद नहीं रहता, और ये तो सच में कमाल का नजरिया है ना ज्योति।
0: और इसके अलावा एक बात और समझनी जरूरी है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में थोड़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: दुनिया या घर के लोग सब हमारी मर्जी के हिसाब से थोड़ी चलेंगे, इसलिए लेट्स गो, छोड़ो बातों को और आगे बढ़ना सीखो।
1: बात तो पते की है ज्योति, जब हम दूसरों को बदलने के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जबकि अगर हम अपनी सोच का नजरिया थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए और अपनी सोच, जैसे कहते हैं ना कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, तो अपना नजरिया बदल दें और आधी परेशानियां जो है वो अपने आप
0: खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। और एक बात और कि अपनी सोच को थोड़ा धीमा कर लें, जब गुस्सा आए तो थोड़ी गहरी गहरी लंबी सांस लें और फिर अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा संतुलित करें, क्योंकि जो हमारी मानसिक शांति है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई है ना ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जैसे हम छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना गौर करें कि जैसे कोई चीज जल गई है ना, खाना जल गया, या कहीं कोई बस छूट गई या कुछ और हो गया, तो ये इनसे ज्यादा जरूरी हमारी मानसिक शांति है।
1: बिल्कुल। और साथ में ज्योति, जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारी चाय ठंडी हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो हमारी सभी सुनने वाली सखियों के नाम भी आज हम एक यही मंत्र देंगे कि अगर चाय ठंडी है तो वो दोबारा बन जाएगी, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान होना।
0: बिल्कुल।
1: तो जाने दीजिए बातों को, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखिए, मुस्कुराइए। कभी कभी दिमाग में होता है किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, तो हमें ऐसी बातों को जाने देना चाहिए। मुस्कुराइए और जिंदगी का मजा लीजिए।
0: हाँ, और अपने आप के मूड को ताजा रखने के लिए इतना सुनिए खूबसूरत गीत, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई।

0: एक नन्ही सी जान जब सांस लेती है अंदर, माँ के आंचल में सिमट जाता है पूरा समंदर। सेहत का ध्यान रखना ही है सच्चा उपहार, पोषण सही है तो खिलता है जीवन का संसार।
1: सुरभि, ये पंक्तियाँ दिल को छू लेने वाली थी। वैसे जब घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की आहट होती है ना, तो पूरे परिवार में अलग ही उमंग और खुशी छा जाती है।
0: बिल्कुल ज्योति, लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमें साथ में जिम्मेदारी भी बहुत आती है कि गर्भवती महिला की सेहत और सही पोषण का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और गर्भावस्था में पोषक तत्वों की भूमिका पर आज हम बात करने वाले हैं।
1: क्योंकि सुरभि, अक्सर हमारी दादी नानी कहती है ना कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वो दो लोगों के लिए भोजन

0: करती है। और भोजन केवल करना ही नहीं है, खाना केवल
1: ज्यादा
0: खाना ही
1: खाने
0: नहीं
1: की
0: है,
1: नहीं होती।
0: ज्यादा नहीं पौष्टिक खाने की बात होती है।
1: बिल्कुल सटीक बात कही है ज्योति। गर्भावस्था के दौरान माँ जो भी खाती है उससे शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। अगर शुरू से ही आहार में सही पोषक तत्व हो तो आने वाला बच्चा सेहतमंद होता है।
0: तो आज हम अपनी बहनों को बताते हैं कि इस दौरान कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं। इनमें जैसे फॉलिक एसिड है, इसकी शुरुआती हफ्तों में बहुत ज़रूरत होती है, जो कि शिशु के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद करता है। इसके साथ साथ पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल खाए जा सकते हैं, और आयरन की कमी ना हो इसके लिए गुड़, पालक, चना, चुकंदर, ये बहुत अच्छे स्रोत है जिनको हमें लेना चाहिए। और हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी युक्त भोजन करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और साथ ही साथ हमें जैसे अपने स्त्रियों की मानसिक स्थिति जो होती है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे नृत्य व संगीत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल सही
1: इनसे
0: कह रही हो।
1: हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है ना ज्योति?
0: और इससे क्या होता है, थकावट और तनाव दोनों कैसे बाहर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जैसे कि रसोई में काम करते करते, अभी जैसे हमारी बहनें भी सुन रही होंगी संगीत काम करते करते, तो उनसे उनकी थकान भी दूर होती है और काम भी जल्दी से
1: सही
0: हो जाता
1: चलता है।
0: है
1: हाँ
0: ना।
1: बिल्कुल सही कहा ज्योति। कई बार तो होता है ना कि शाम की वजह कभी कभी हम चिड़चिड़ापन में हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और
0: बिल्कुल।
1: हमारा मन भारी हो जाता है। समझ में भी नहीं आता कि इस थकावट से कैसे बाहर निकलें।
0: तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है संगीत, और
1: बिल्कुल
0: संगीत को सुनिए, खुद गुनगुनाइए, और जब चाहें तो नृत्य भी साथ में कर सकते हैं। क्यों, मुझे तो बड़ा शौक है, तुमको भी है क्या?
1: बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है
0: हाँ,
1: गाना
0: और
1: सुनना
0: कई
1: और
0: बार तो
1: नृत्य
0: मैं, पता
1: करना।
0: है, रसोई में काम कर रही होती हूँ, कोई अच्छा
1: हाँ
0: गाना आता है ना, तो
1: हाँ
0: वो चिमटा और कलछी हाथ लेके भी नाचने लग जाती
1: हाँ बिल्कुल। जो
0: है।
1: कलछी है वो अपने माइक का काम कर सकती है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: हाँ
0: बिल्कुल। तो
1: तो हाँ जब सारा मूड बदल जाता है, थकावट गायब हो जाती है और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है।
0: और ऐसी ऊर्जा बढ़ जाती है ना कि पता ही नहीं चलता कब सुनते सुनते, संगीत सुनते या गीत गाते हुए हमारा समय बीत जाता है। तो आइए हम भी आज संगीत सुन लें, ऐसा कोई नृत्य करने के लिए।
1: हाँ बिल्कुल।

0: तो बहनों, इस गीत के साथ आप झूमते रहिए, नाचते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से। ज्योति वर्मा,
1: सुरभि बोरा का प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, प्रस्तुतकर्ता थी सुरभि बोहरा और ज्योति वर्मा। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें FM चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: about 12,000 people was ordered evacuated overnight, along with about 8,000 people in and around nearby Peachland. In badminton, India's Ashmita Chalia has clinched the women's singles champion at the Korea Masters tournament today. Ashmita defeated China's Han Qianxi. The shuttler recovered from losing the opening game to prevail 14-21, 21-14, 21-14 in 53 minutes. With this win, she claimed her first BWF title. She has also become the first Indian to win the Korea Masters, and it's a second consecutive women's singles title for India after Tanvi Sharma's victory at the Taipei Open last week. India's medal tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championship in the United States. Basant Kumar Meghwal won a silver in high jump, while Shahnawaz Khan wins a bronze in the long jump today. In men's high jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meter to win a silver medal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive floods concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chalia clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार

0: और द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
1: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एज वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवायरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई On this day, it is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में

0: जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है।

0: बक्सर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने।

लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में कामचोर फिल्म का गीत, तर्ज इंदिवर की है, संगीत राजेश रोशन का।

प्रोग्राम की अगली पेशकश हीरो फिल्म से है। स्वर है लता मंगेशकर का। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत। स्वर है अमिताभ बच्चन, आशा भोंसले और शरद कुमार का। गीत के बोल संतोष आनंद ने लिखे हैं, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

क्रांति फिल्म में लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के गाए, संतोष आनंद के लिखे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर

विविद भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल आज के इस प्रोग्राम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार लता मंगेशकर के युगल सोलो में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजिम से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदाना का इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर प्रिंस और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता अर्जुन गवाड़कर और बहादुरा नागपुर के ये श्रोता हैं वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाहा जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से बिपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और मेहराज जहानी। इन्होंने लिखा है आजाद नगर लक्सर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर, प्रशांत, सचिन, सर्वद, प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे। इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागवेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाही गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की गई इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की, ये आवाजें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद, इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा रमाताई, सीमाताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, सहल ध्यानवी के बोल खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है। ये बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोता रहता है हमें इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाट्य तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग, किसी एक फूल का नाम लो।
1: आप सब लोग को छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
3: जस्ती आवाज के बारे में आप क्या जानते? मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
4: प्रीतम सोनी,
3: कौन?
4: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
3: नहीं,
4: लेकिन क्या ये सच है?
3: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बन पड़ा किया, सच को छिपाया, सच को छिपाया।
4: क्या आप अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे, झूठ छुपाओगे?
3: नहीं,
4: बोलो।
3: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था।
2: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहां है का?

0: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो लेकिन जो है वही मांगता है वो।
1: क्या मतलब?
0: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
1: ये बात और कोई भी जानता है?
0: नहीं।
1: पाठक भी नहीं?
0: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा, मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
1: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है, और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं। पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं। पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, हंसेंगे। और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया, और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कहानी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं।
2: ओ, ये कौन आमर आई समय कौन है?
3: भैया मैं यानी केशव ठाकर।
2: क्या?
3: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
2: ओह हाँ।
3: नमस्कार कामनी जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
3: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
2: तुम जरा जल्दी आ गए।
3: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये